0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: नो
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
4: Ab, mirchi kha.
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: घर में तो आप कह रहे हो कि ट्यूशन का ओवरटाइम है, लेकिन द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट यू हैव अ रोरिंग अफेयर विद योर ट्यूशन टीचर. ऐसी कन्फेशंस किसके साथ करोगे?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: ऑब्वियस द राइट आंसर इज मेरे साथ. और मुझे एक कन्फेशन बताने के लिए शुक्ला जी ने अपना नंबर भेज दिया है. बट बिफोर आई कॉल हिम, अगर आपके पास भी है कोई क्रेजी, क्रिस्प, इनक्रेडिबल, फनी, हिलेरियस कन्फेशन, व्हाई डोंट यू हिट मी अप. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड नाउ लेट्स कॉल मिस्टर शुक्ला. हेलो. शुक्ला जी, मैं रोशी बोल रही हूँ.
3: हाँ, हाय रोशी.
1: तो क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में?
3: एक्चुअली मैम, अभी तो मेरा एजुकेशन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं अभी हम.
1: अच्छा, बीएड कर रहे हैं आप. तो आप सिंगल हैं कि डबल रोटी हैं?
3: नहीं, अभी तो सिंगल ही हैं.
1: मजे आ रहे हैं सिंगल रह के कि कोई लड़की पसंद आ गई है?
3: अरे स्टोरी वो बहुत गंदी स्टोरी.
1: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपके साथ हो चुका है, प्यार में पड़ चुके हैं आप पहले?
3: हाँ मैम, एक तरह से बिल्कुल हो गया था, बट फिर पता नहीं क्या भगवान को मंजूर था.
1: तो हुआ क्या था?
3: एक्चुअली मैं ये था कि अभी मेरा रिसेंटली मैंने 21 में बीएड ज्वाइन किया था. सो वहाँ पे मतलब काफी को एजुकेशन है, तो सारी गर्ल्स एंड बॉयज साथ में पढ़ते हैं. तो ऐसे ही एक बैचमेट थी, मैंने उससे थोड़ा क्लोजली बातचीत करना एंड शेयरिंग नोट्स वगैरह वो चालू करा. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मतलब कि वो अकेले रूम पे रहती है, तो मैंने पूछा और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ. तो उसने बोला कि कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ. और फिर क्या होता है, फिर मतलब थोड़ा टाइम बाद और पता चलता है, तो पता चलता है उसके भैया भी आते हैं कभी कभी. तो मैंने कहा ठीक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है. फिर ऐसे ही 6 महीने हो जाते उसके भैया 15 दिन पर आते हैं. फिर मैंने सोचा चलो प्रपोज कर देते हैं. तो मैंने उस दिन सोचा था कि चलो डिफरेंट स्टाइल में करते हैं थोड़ा. तो मैंने बकायदा मतलब लेटर लिखा और मैंने सोचा आज जब फोन मिलाऊंगा तो मैं ये पढ़ूंगा उसके सामने. और होता क्या है, उसी मोमेंट पे मुझे उसने बताया वो मेरे भैया नहीं, वो मेरे बॉयफ्रेंड है. और मेरे उसको पढ़ने और मैंने काफी मतलब कि 2-3 दिन रिसर्च करके बोल ऐसा मैं बोल.
1: ओ यार, ऐसा तो बहुत खराब हुआ, लेकिन मतलब बहुत खराब.
3: अब जिसको बताओ वो मेरे मजाक उड़ाते हैं.
1: यू नो व्हाट यू नीड वैसे ना, आकर्षण. आपको रोशिफिकेशन की जरूरत है, पता है ना आपको ये?
3: हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत जरूरत है. मैंने जिसको जिसको बताया वो
1: आप ये रोशिफिकेशन तो ले ही लीजिए. ओ गौरव, आपकी स्टोरी सुन के मुझे इतनी हंसी आई है, इतनी हंसी आई है. आई होप यू आर नॉट वेरी हार्ट ब्रोकन.
3: एक्चुअली मैम, वो जो मैंने लिखा था ना, मतलब 2-3 दिन लगाए थे, 2-3 मतलब हफ्ते की रिसर्च करी थी. बड़ी दूर तक
1: सुन, वो संभाल के रखा आकर्षण. हो सकता है कि ऐसा तेरी जिंदगी में कोई और इंसान आ जाए, तब 3 दिन की मेहनत बच जाएगी तेरी, ऐसा मुझे लगता है. और जब ऐसा हो ना तो हमको जरूर बताना, ठीक है?
3: ठीक है.
1: इट वॉज सो नाइस टॉकिंग टू यू आकर्षण, मजे आ गए आपसे बात करके. आपकी स्टोरी बेहद कमाल, और हियर्स अ लिटिल किस फॉर यू.
3: वो मोमेंट मुझे अभी भी नहीं भूलता,
1: जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा. और अगर आपकी जिंदगी में कोई और लड़की मिली जिसे आप यही प्रेम पत्र पढ़ के सुनाएंगे, मुझे जरूर बताना, ठीक है? ओके आकर्षण, टेक केयर, आई लव यू. ओके डार्लिंग, बाय. और अगर आकर्षण की तरह आपकी भी जिंदगी में कोई अब्सर्ड AF कन्फेशन है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, मेरी जान, आई विल बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग 0 closing कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: थोड़ा हाथ हिला लो, उसमें कुछ घिसेगा नहीं। बचपन में मम्मी कहती थी ना आपको ये कि सारे काम मैं ही क्यों करूं घर में, तुम सब मेरे बच्चे भी हो, थोड़ा सा इधर उधर हाथ हिला लो, मम्मी की मदद कर दो, चीजें जगह पर रख दो, थोड़ी डस्टिंग कर दो। बट आप तब भी लेजी AF थे, अब भी लेजी AF हो। पहले मम्मी ऐसे कहती थी, आज गर्लफ्रेंड ऐसा कहती है। बट आपने एज अ मैन इन द रिलेशनशिप कसम खा ली है कि जब तक आपकी बंदी रोते हुए सिसकते हुए ये नहीं कहेगी कि 3 महीने हो गए तुझे शर्म नहीं आती है, एक बार तूने सैटरडे या संडे को बाहर जाने का प्लान नहीं बनाया, तब शायद आपको शर्म आ जाए, आप प्लान बना लो। लेकिन बाय द टाइम डिनर टाइम इज क्लोज बाय, आपको थकान हो जाती है, देन यू आर लाइक यार ऑर्डर इन कर लेते हैं, तेरे घर खा लेंगे, मेरे घर खा लेंगे, बट घर पे खाते हैं, बाहर क्या जाना। यार एज गाइज वाई डोंट यू गेट दिस वन थिंग कि हमें अच्छा लगता है जब एज अ बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या पार्टनर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव शो कर लो, थोड़ा सा, बस इतना सा, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर इतना सा भी नहीं हो पा रहा ना आपसे, तो या तो आप रिलेशनशिप से बाहर चले जाओ, या आप मुझे फोन कर लो, एक्चुअली अपना नंबर भेज दो, क्योंकि फोन करने की हिम्मत कहाँ ही होगी आप में, एंड आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, ओके, जस्ट बिकॉज आई लव यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक। बट सीरियसली, अगर आप थोड़ी सी अपने ही रिलेशनशिप में खुद की मदद कर दो बाई मेकिंग एक्टिव प्लान्स विद योर पार्टनर, मे बी यू वोंट नीड टू कॉल मी। बट ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: हमारी पुरानी गर्लफ्रेंड ने तो हमको डंप कर दिया दीदी, लेकिन हम उनमें से नहीं है जो हार मान के बैठ जाएंगे. हमारे पास है एक और डेट, ठीक है ना, हम जाएंगे उस डेट पर. लेकिन दीदी का हो गया ना, ब्रेकअप के बाद हम बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, अब ऐसे लग रहा है कि एकदम तोन निकल आया है. तो का करें, डेट तो हमारा 5 दिन के बाद है, हमको थोड़ा सा पतला कर दो दीदी, बस बहुत मेहरबानी होगी आपकी. ये जो हमारे घर में दीदी काम करती है ना, और उनका नेफ्यू, इसका और मेरा रिलेशनशिप ही बनता जा रहा है. मतलब इस बंदे की जिंदगी में इसे एग्जाम देना हो, दांत निकलवाना हो, बंदी को डेट करना है या पापा को फोन करना है, सबसे पहले हमको फोन करके बताएंगे कि दीदी ए हो रहा है, अब बताइए किसका करना क्या है. तो फिर मैंने इसे एडवाइस दी कि यार 5 दिन है तेरे पास और तू खाता इतना सारा है, क्योंकि खाना शुरू किया था इन्होंने गम में. इस बात को 5 महीने हो गए लेकिन अभी भी खाते ऐसे ही हैं जैसे कल ब्रेकअप हुआ था. सो आई टोल्ड हिम कि खाने से पहले 1 कप सूप या 1 कटोरी दाल खा ले. उससे क्या होगा, ये है तो हाई प्रोटीन चीज, इससे पेट भर भी जाएगा और ज्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं होंगी. तो इसने तो एक्चुअली ये करना शुरू किया है कि दिन में 3 बार या तो सिर्फ सूप पी रहा है या दाल खा रहा है. ये तो पागल का पागल ही रहेगा. लेकिन अगर आप भी एक डेट पर जाने वाले हो इन अ कपल ऑफ डेज एंड यू वांट टू लाइक जस्ट लुक लीनर, माय सजेशन इज कि आप हर मील से पहले यू आइदर हैव अ बोल ऑफ सूप या अ बोल ऑफ दाल. दैट एक्चुअली हेल्प्स मेक यू फील अ लॉट फुलर एंड यू एंड अप ईटिंग कम खाना. कॉन्सिक्वेंटली तो आपकी तोन अंदर चली जाएगी. पर एक बात बताऊं को ऑनेस्टली, अगर कोई इंसान आपको सुपरफिशियली जज कर रहा है, मे बी देयर नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. अब आपका काउंटर आगे

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9082220002 और विजिट aimseducation.edu.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
3: अब मिर्ची खा.
5: Radio Mirchi, it's hot.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

आपको पता है द इक क्या होता है? इट्स अ जेन ज़ी टर्म फॉर समथिंग जो आपको बहुत बीटी देता है, और मतलब जितनी बार आप उस चीज को या उस इंसान को देखो, यू गेट द इक कि एयू ये क्या है. एक रिलेशनशिप में ना, कई लोगों की जिंदगी में, नॉट एवरीबडी, एक ऐसा स्टेज आता है जब आपका पार्टनर आपको द इक देता है. ठीक है, उसको देखकर ना पता नहीं एक या वो काम करता है ऐसा, या बस जनरल बिहेवियर होता है, और आपको उसको देखकर बस बीटी होने लग जाती है. माय क्वेश्चन टू यू इज, जब ऐसी बीटी वाली अवस्था आती है, यानी कि बैड ट्रिप, कैन यू एवर रिवर्स दैट? कि आपका पार्टनर आपको इरिटेट करना शुरू कर चुका है और उसके बाद उसकी हर बात आपको इरिटेट करी है. इनफैक्ट द फैक्ट कि वो सांस ले रहा है ऑल्सो इरिटेट्स यू. बट क्या वो रिवर्सिबल है? क्या फाइनली कैन यू गो बैक टू बीइंग बैक इन लव विद योर पार्टनर आफ्टर ही हैज गिवन यू द इक? इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि सही में मुझे सच्ची में इसका जवाब चाहिए, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये कौन सी दुनिया में होता है कि ब्लाइंड डेट का मतलब सच में ये है कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और तब आपको कहा जाएगा कि अब मिलो अपने पोटेंशियल डेट से। आई वॉज सीरियसली स्टंड। ओके, सो इस वीकेंड मैं जनरली ढूंढ रही थी कि क्या करना है सिटी में, कुछ एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग हो रहा है। देन आई केम अक्रॉस दिस थिंग विच सेड, अगर आप सिंगल हैं, ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे 800 रुपये या 1200, आई डोंट रिमेम्बर। और आपको इस वेन्यू पर जाना है जहां पर ऑब्वियसली दे विल वेरीफाई यू, पैन कार्ड जो भी है। उसके बाद आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। दे विल लीड यू इनसाइड, एक बड़ा सा टेबल होगा, टेबल के इस साइड पर एक और इंसान होगा, इन माय केस इट विल बी अ गाय, जिसकी आंखों पर पट्टी होगी एज वेल। और हम एक दूसरे से बात करेंगे विदाउट सीइंग ईच अदर, टू सी की वाइब चेक होती है कि नहीं। अगर हो जाता है देन आई गेस सेकेंड डेट पर अपना अपना देख लो क्या करना है। बट यू नो दैट्स द थिंग, आई चेक दिस एंड अक्रॉस द कंट्री, ये एक सिटी की बात नहीं है, मोस्ट मेजर सिटीज, सम इवन स्मॉलर सिटीज आर डूइंग दिस ब्लाइंडेड सिचुएशन, जिसमें जेन्युइनली आपकी आंखों के सामने पट्टी बांध देंगे। भाई लाइक आई एम थिंकिंग कि अगर महाभारत की गांधारी यहाँ होती तो शी वुड फील सो इंक्लूसिव यार, शीड बी लाइक आई एम नॉट दी ओनली वन जो पट्टी पहन के घूम रही है, भाई बाकी लोग भी ऐसे कर रहे हैं वॉल्यूंटेरली। टॉकिंग अबाउट वॉलेंटरली, आपने अपने रिलेशनशिप में से क्या क्या वाहियात काम किए हैं जो आप वैसे तो ना करते लेकिन प्यार अंधा होता है। पुष्पा, जो भी आपने ऐसे वाहियात काम किए हैं, वाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE, एंड यस आई विल गो आउट ऑन अ ब्लाइंड डेट विद यू। ऑन दैट नोट,

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: घर में तो आप कह रहे हो कि ट्यूशन का ओवरटाइम है, लेकिन द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट यू हैव अ रोरिंग अफेयर विद योर ट्यूशन टीचर. ऐसी कन्फेशंस किसके साथ करोगे?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: ऑब्वियस द राइट आंसर इज मेरे साथ. और मुझे एक कन्फेशन बताने के लिए शुक्ला जी ने अपना नंबर भेज दिया है. बट बिफोर आई कॉल हिम, अगर आपके पास भी है कोई क्रेजी क्रिस्प इनक्रेडिबल फनी हिलेरियस कन्फेशन, व्हाई डोंट यू हिट मी अप. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड नाउ लेट्स कॉल मिस्टर शुक्ला. हेलो.
3: हाँ
1: शुक्ला जी, मैं रोशी बोल रही हूँ.
3: हाँ रोशी,
1: तो क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में?
3: एक्चुअली अभी तो मेरा एजुकेशन चल रहा है, बीएड कर रहे हैं अभी हम.
1: अच्छा, बीएड कर रहे हैं आप, तो आप सिंगल हैं कि डबल रोटी हैं?
3: नहीं अभी तो सिंगल ही हैं.
1: मजे आ रहे हैं सिंगल रह के कि कोई लड़की पसंद आ गई है?
3: अरे स्टोरी वो बहुत गंदी स्टोरी.
1: क्या बात कर रहे हो. अच्छा, आपके साथ हो चुका है, प्यार में पड़ चुके हैं आप पहले?
3: हाँ मैम, एक तरह से बिल्कुल हो गया था, बट फिर पता नहीं क्या भगवान को मंजूर था.
1: तो हुआ क्या था?
3: एक्चुअली मैं ये था कि अभी मेरा रिसेंटली मैंने 21 में बीएड ज्वाइन किया था.
1: हाँ.
3: सो वहाँ पे मतलब काफी को एजुकेशन है, तो सारी गर्ल्स एंड बॉयज साथ में पढ़ते हैं.
1: हाँ.
3: तो ऐसे ही एक बैचमेट थी, मैंने उससे थोड़ा क्लोजली बातचीत करना एंड शेयरिंग नोट्स वगैरह वो चालू करा. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मतलब कि वो अकेले रूम पे रहती है, तो मैंने पूछा और कौन कौन रहता तुम्हारे साथ. तो उसने बोला कि कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ. और फिर क्या होता है, फिर मतलब थोड़ा टाइम बाद और पता चलता है उसके भैया भी आते हैं कभी कभी. तो मैंने कहा ठीक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है. फिर ऐसे ही 6 महीने हो जाते हैं. उसके भैया 15 दिन पर आते हैं.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है दैट जब हम किसी को प्यार करते हैं स्पेशली इफ इट्स द फर्स्ट कपल ऑफ टाइम्स जब हमें प्यार हो रहा होता है हमें ऐसा लगता है कि यार हमने इतना सारा लव अपना स्पेंड कर दिया विद दिस पर्सन जिसने शायद ही टुक द बेस्ट बिट्स फ्रॉम अस या शी टुक द बेस्ट बिट्स फ्रॉम अस और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है ना अपने आप को देने के लिए ना किसी और को देने के लिए एंड इट्स हैपेंड एक बार दो बार और विद द सेम पर्सन इट्स हैपेंड दो बार तीन बार एंड यू आर लाइक मे बी I don't deserve the love जो हम हिंदी मूवीज में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं But I'll tell you something. I've had this really long career of dating. मतलब literally career है मैं CV में डाल सकती हूँ the kind of frogs that I've dated जो princess नहीं बने But the truth is that the only thing I have learnt is you have to persist. अगर आपका पहला ट्राई खराब था इट डजंट मैटर तीसरा ट्राई खराब था इट डजंट मैटर बिकॉज एक सच बात तो ये है देयर इज अ लव स्टोरी फॉर एवरीवन आपकी लव स्टोरी कब आपको टकरा जाए यू हैव नो आइडिया

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
3: नहीं नहीं सर, ये 25000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने, मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
2: बताइए,
3: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो।
4: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4 आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 carat एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 carat एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4 इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

पुरानी फिल्मों के रोमांटिक सीन्स में से ना एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये सत्य भी सत्ता फिल्म से है, जब अमिताभ बच्चन साहब हेमा मालिनी जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इनको खास पसंद नहीं कर रही होती हैं, तो अमिताभ बच्चन इनके लिए फूलों का गुलदस्ता लाते हैं, इनके घर की बेल बजाते हैं, वो दरवाजा खोलती हैं, वो गुलदस्ता ऑफर करते हैं, वो थोड़ा गुस्से में दरवाजा बंद करती हैं, तो क्या होता है कि गुलदस्ते में से गुल फूल जो है वो दरवाजे में फंस के घर के अंदर रह जाते हैं, और दस्ता जो है खाली डंडियां कांटे जो है वो अमिताभ बच्चन के हाथ में रह जाते हैं। फिर हेमा मालिनी जी उन फूलों को देख के ऐसे थोड़ी पिघल जाती हैं और उन्हें अमिताभ बच्चन पे प्यार आ जाता है, और बैकग्राउंड में फीमेल वोकल्स हमिंग साउंड। यस, ये सीन इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत गाने में है जो हम अभी सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबी वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: कौन?
4: हेलो
3: हाँ बोलो कौन?
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोल कौन रहा है?
4: बोल कौन रहे हो? कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
3: बोल कौन रहे हो?
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोला था।
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
3: हाँ बोलो।
4: यार आपके टॉयलेट में अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट में अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर।
3: कब आया था? कब घुसा अंदर?
4: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
3: तू कहाँ से रहा है? नहीं हो गया है?
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
4: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
3: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
3: सीवर में मरा रहा है तू?
4: गाली तो मत दो।
3: हेलो
4: हेलो
3: फिर फोन कर दिया तूने?
4: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
3: क्या बोलो?
4: कुकुलुकु।
5: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
3: कुकुलुकु
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
1: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा
1: मिर्ची मुर्गा।
7: हेलो
8: हेलो बेटा नवनीत।
7: आप कौन?
8: पापा कहाँ हैं?
7: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
8: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
7: लेकिन आपको काम क्या है?
8: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
7: पापा ने कहा था?
8: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
7: क्या हुआ अंकल?
8: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे से। दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
7: अब मुझे क्यों डांट?
8: चुप कर।
7: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
8: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा है तूने?
7: पापा को ऐसे किस बात का बुरा लगा? मुझे ये भी नहीं
8: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
7: लेकिन बुरी क्या लगी?
8: अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
7: बदतमीजी क्या करी थी?
8: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
7: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
8: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
7: अंकल ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
8: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
7: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
7: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
8: चुप कर मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7. 97 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only

0: बहुत कम उम्र में परेशानियों ने म्यूजिक कंपोजर जयदेव साहब का हाथ पकड़ लिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। माँ बाप को कम उम्र में खो देना, घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेना, खुद शादी नहीं करना, लेकिन एक चीज जिसका हाथ जयदेव साहब ने पकड़ के रखा वो था उनका संगीत। संगीत सीखने की धुन में वो अलग अलग शहरों में भटकते रहे, फाइनली लखनऊ पहुंचे अपने गुरु अली अकबर खान से संगीत सीखने। उन्हीं के साथ बॉम्बे भी गए। गुरु चेले दोनों ने नवकेतन फिल्म्स में काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी गुरु जी का दिल बॉम्बे नगरी से भर गया। वो वापस चले गए लेकिन जयदेव साहब वहीं रह गए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नवकेतन में चूंकि मैं परमानेंट मुलाजिम था, तो चेतन आनंद साहब ने बर्मन दादा से पूछा कि दादा हमारे पास जयदेव है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ जयदेव को अच्छी तरह से, तो क्या आप उसको हमारी फिल्म के लिए, सिर्फ हमारी फिल्म के लिए अपना असिस्टेंट एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि दादा के बहुत असिस्टेंट थे उस वक्त, कहा मैं जयदेव को लूंगा, और बाद में धीरे धीरे मैं उनका चीफ असिस्टेंट बना। इसी बीच में मुझे अपनी फिल्म जोरुगा भाई, इंडिपेंडेंट फिल्म किनारे किनारे, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही।
0: जयदेव साहब ने बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक क्रिएट किया, लेकिन सैडली उनकी मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स चली नहीं, पर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको पता है बॉम्बे नगरी से जब उनका मोह भंग हो जाता था, वो हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाते थे और वापस आकर फिर औसम म्यूजिक क्रिएट करते थे। उनकी तीन फिल्मों के म्यूजिक को नेशनल अवार्ड मिला है, रेशमा और शेरा, अनकही और गमन, जिसका ये ब्यूटीफुल सॉन्ग हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
2: हाँ हाँ सुना।
1: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब?
1: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, July 4th इंडिपेंडेंस डे से August 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

चांदनी फिल्म से सिर्फ श्रीदेवी ही सेंसेशन नहीं बन गई थी, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका फैशन, उनकी ड्रेसेस भी सेंसेशन बन गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके वो वाइट चूड़ीदार कुर्ता, कमीज, लहरिया दुपट्टा, उनके शिफॉन की साड़ीज क्या पॉपुलर हुई थी भाई, खास करके उनके वो सूट। ऐसा ही कहा जाता था बाजार में, वो चांदनी स्टाइल सूट दिखाना। इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है कि कोई अगर पूरे सफेद कपड़ों में ड्रेस्ड है लड़की, तो उसे बोला जाता है कि तुम तो बिल्कुल चांदनी बन गई भाई। ये होती है लेगेसी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

नमक हराम फिल्म का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये फिल्म देखो ना, असरानी साहब को एक सीन में जरूर देखना। वो कुछ होली का सीन होता है जहाँ ये भांग वांग पी लेते हैं, और वो भांग जो इनको चढ़ती है ना, वो जो सीन्स दिखाए गए हैं, वो कॉमेडी सीन्स जो दिखाए गए हैं, उसमें असरानी साहब की क्या परफॉर्मेंस है। मेरा ना बड़ा कुछ बताने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसे स्पॉइलर जैसे हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी फिल्म तो मजा खराब हो जाएगा आपके लिए। देखिए, लेकिन याद नहीं आ रहा तो दोबारा से देखो, बड़ी ही मजेदार कॉमेडी है वो। है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

हल्लो, ये बात तो मुझको पता ही नहीं थी। मिर्ची, सुन रहे आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि रेखा की सिस्टर जिनका नाम राधा था, वो एक मॉडल थी और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस भी थी। इनफैक्ट उनको बॉबी फिल्म, जी वही डिम्पल कपाड़िया ऋषि कपूर वाली बॉबी फिल्म, उसमें हीरोइन का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि फिल्मों में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली उनको मॉडलिंग ज्यादा पसंद थी और ये जगमग चकमक फिल्मी दुनिया वाली लाइफ इन्होंने काफी जल्दी छोड़ दी थी। अपने बचपन के दोस्त, जो बाद में जाके इनके बॉयफ्रेंड भी बने, उनसे शादी करके जाके ये यूएस में सेटल हो गई थी। सही है भाई, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। इनको ये ग्लैमर चकाचौंध मिल रही थी, इनको नहीं चाहिए थी। जिनको नहीं मिलती उनको चाहिए रहती है, यही तो लफड़ा है जीवन का। जिसको जो मिलता है वो उसको चाहिए नहीं, जो उसको चाहिए वो उसको मिलता नहीं। फिलहाल मुझे चाहिए आपके चेहरे पे मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
4: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
4: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
3: 7,500 रुपए का।
4: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
4: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
4: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
4: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती हैं बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
4: ये भी तुम ही देख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
4: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
4: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
4: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
4: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़ में
3: गए। आपकी बात सुनिए, आप वैसे ही टेंशन में लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
4: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

पुरानी फिल्मों की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट्स या इसे ट्रेंड सेटर भी बोल सकते हैं हम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में मुमताज जी ने जो साड़ी पहनी थी, वो गॉर्जियस ऑरेंज साड़ी जिसने ऐसे हड़कंप मचा दिया था फैशन इंडस्ट्री में उस टाइम। तब तक साड़ी को एज ए ट्रेडिशनल अटायर देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से मुमताज जी ने पहनी, उसमें डांस किया, उसे कैरी किया, साड़ी को एक ग्लैमरस ट्रेंडी पार्टी वेयर के तौर पे भी देखा जाने लगा। अच्छा, इस साड़ी को डिजाइन और स्टाइल किया था भानु अथैया जी ने। उन्होंने स्पेशली ये प्री प्लीटेड साड़ी बनाई थी जिसके साइड में जिप लगी हुई थी। ये इस तरह से डिजाइन की गई थी ताकि मुमताज जी इस पे कम्फर्टेबली डांस कर पाए। उसका वो गोल्डन बॉर्डर, उसका वो लंबा पल्लू, उफ तौबा, एंड द वे मुमताज जी कैरीड इट, वाओ। इस तरह की साड़ी ड्रेपिंग के बाद ही उस टाइम के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स या फैशन डिजाइनर्स ने साड़ी के साथ अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
2: हाँ हाँ सुना,
1: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तो चले,
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

चलिए अवतार फिल्म की बात करते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं नहीं, जेम्स कैमरन वाली अवतार नहीं, मैं तो 1983 की फिल्म अवतार की बात कर रही हूँ, जिसमें राजेश खन्ना अवतार किशन बनते और उनका ये किरदार बहुत पॉपुलर हुआ था। किरदार क्या, फिल्म भी हिट हुई थी और इसका पता क्या असर पड़ा था, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वो था ना कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, बूढ़े माँ बाप को, इंस्पिरेशन फॉर बागबान फिल्म एज वेल। तो ये फिल्म देखने के बाद बहुत से लोगों ने ना अपनी वसीयत बदल दी थी, जहाँ पर उन्होंने अपने घर जो है बच्चों के नाम कर दिए थे, वो वापस बच्चों के नाम से हटा के अपने नाम करवा लिए कि ये बच्चे भी हमारे साथ ना ऐसा कर दे जैसा कि इस फिल्म में किया गया। इस फिल्म का ना गाना बड़ा सही था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने लिखा, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

ओए कितना क्यूट गाना कसौटी फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना मेनली प्राण साहब पे पिक्चराइज्ड है। भाई प्राण साहब अपने उसूलों के इतने पक्के थे ना, उनकी एक फिल्म थी 1972 की बेईमान, जिसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से उस साल बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड पाकीज़ा फिल्म को मिलना चाहिए था, जबकि उसकी जगह इन्हीं की ये जो फिल्म थी ना बेईमान, इसके म्यूजिक को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला। ये बात प्राण साहब और इनफैक्ट बहुत से लोग उस टाइम पे, मैं आपको कहूँ, उनके गले नहीं उतरी थी, तो इन्होंने अपना अवार्ड भी लेने से मना कर दिया। होते हैं कुछ लोग, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसके बारे में काफी सीरियसली सोचते हैं और उसके लिए खड़े भी होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये जिंदगी, जीवन, लाइफ की फिलॉसफी वाले गाने ना, इनका एक अलग ही लेवल है। हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं क्या, ये वाला गाना हो गया एक पिया का घर फिल्म का जो हमने अभी सुना, ये जीवन है, फिर जीवन के हर मोड़ पे, वो आई थिंक कौन सी फिल्म का था, झूठा कहीं का आई थिंक, फिर एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, फिर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, इम्तिहान फिल्म का, देन जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, और इन गानों का पप्पा गाना, वो गाना अब हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची
1: जिंदगी।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: कौन?
4: हेलो
3: हाँ बोलो कौन?
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोल कौन रहा है?
4: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
3: बोल कौन रहे हो?
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोला था।
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
3: हाँ बोलो।
4: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ हाँ बोला था, हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर।
3: कब आया था? कब घुसा अंदर?
4: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
3: तू कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
4: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
3: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
3: सीवर में मरा रहा है तू?
4: गाली तो मत दो।
3: हेलो
4: हेलो,
3: फिर फोन कर दिया तूने?
4: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
3: क्या बोलो?
4: कुकड़ू को
5: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया।
3: कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

कैसा बद्दुआ देता हुआ गाना है ये अनामिका फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अबे दिल टूटे आशिक के दिल से बद्दुआ तो निकलेगी यार, क्यों नहीं निकलेगी। अच्छा इसी बात पे हार्ट ब्रेक पे एक शायरी सुनो। हफीज जलंधरी नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है, ओ दिल तोड़ के जाने वाले दिल की बात बताता जा, अब मैं दिल को क्या समझाऊं मुझको भी समझाता जा। वैसे मुझे ना हार्ट ब्रेक के गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन पता है कौन से वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिन पे आप डांस कर पाओ, जैसे कि ये वाला जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
2: हाँ हाँ सुना,
1: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तो चले,
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

लेन की डेब्यू फिल्म 1977 की दूसरा आदमी भी हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। तो हुआ कुछ यूं था कि ऋषि कपूर ने टीना मुनीम को कहीं देखा था और उस वक्त दूसरा आदमी फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, तो उन्होंने यश चोपड़ा साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनको टीना मुनीम का नाम रिकमेंड किया। टीना मुनीम स्क्रीन टेस्ट के लिए आई लेकिन उस टाइम ना तो ऋषि कपूर मौजूद थे ना यश चोपड़ा साहब। यश चोपड़ा साहब की टीम के कुछ मेंबर्स मौजूद थे, कुछ टेक्नीशियंस थे, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह लिया। वहां पर कुछ बात हुई जो टीना मुनीम को अच्छी नहीं लगी और इस वजह से दूसरा आदमी फिल्म में उनका जो रोल है वो कुछ फाइनल नहीं हो पाया एंड देन उस रोल के लिए नीतू सिंह को साइन किया गया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और सुनेंगे इसी फिल्म का गाना जो है क्या बात क्या बात क्या बात। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1971 की फिल्म मेला का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में दोनों खान भाई थे, फिरोज खान संजय खान, और दोनों ने फिल्म मेकर को एक कॉम्बो डील दी थी कि आप हम दोनों को साइन कर लो तो पैसे कम कर देंगे। नहीं मतलब ऐसा कुछ हुआ था, बट फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी। वैसे 90s में भी एक मेला नाम की फिल्म आई थी जिसमें दो खान भाई थे, आमिर खान फैजल खान, ये भी बुरी तरह पिट गई थी। वो तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर थी। तो फिल्म बनाने वालों को ये लेसन लेना चाहिए कि जब भी आप मेला नाम से फिल्म बनाए तो उसमें दो भाइयों को साइन ना करें। खैर कमिंग बैक टू पुरानी फिल्म, 1970 की एक और डिजास्टर फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं, लेकिन इसका म्यूजिक क्या चला था। और इसका ये गाना कंपोज्ड बाय SD बर्मन, रिटन बाय आनंद बख्शी, संग बाय लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, July 4th इंडिपेंडेंस डे से August 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तू चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: Radio Mirchi, it's
3: hot. 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी.

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

ऐसी यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Regard role के लिए होता है, लेकिन respect हमेशा इंसान की soul के लिए होता है. आइए इस गहरे कॉन्सेप्ट को समझें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: बहुत अच्छी बात आपने कही, और उसमें आपने सीनियर जूनियर वाली भी बात कही कि कभी कभी हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं. तो कई बार क्या होता है, कुछ कामों में हम सीनियर को रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि वो उस कला में निपुण है, वो ज्यादा जानते हैं. लेकिन कभी कभी इसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि भैया मैं यहाँ पे कई सालों से हूँ या मैं बड़ा हूँ तो मुझे तुम रिस्पेक्ट दो. तो इस भेदभाव से या इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें?
4: एक होता है रिस्पेक्ट, दूसरा होता है रिगार्ड.
3: हाँ बिल्कुल, बहुत.
4: तो अगर आपका कोई रोल है, समझो आप सीनियर हैं, कोई सीईओ हैं, वो रोल भी प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत करी है. नॉट एवरीबडी हैज दैट रोल. तो अगर वो रोल है तो आपके अंदर कोई टैलेंट है, स्किल है, एक्सपर्टीज है, तो रोल के साथ जो प्रोटोकॉल आता है या जो रिगार्ड आता है वो मिलना चाहिए. वो रोल का रिगार्ड आपको मिलना चाहिए. कोई आपके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है, कोई आपको चेयर लाकर देता है, इट इज ओके. घर में बड़े भी होते हैं तो हम उनको रिगार्ड देते हैं. रिगार्ड रोल के लिए होता है, रिस्पेक्ट सोल के लिए होता है.
3: अरे वाह, क्या बात. रिगार्ड रोल के लिए होता है, रिस्पेक्ट सोल के लिए होता है.
4: सोल चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, पोजीशन कोई भी है, लेकिन हर एक सोल को एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट चाहिए.
3: जी.
4: व्हिच मींस कि वो जो रिस्पेक्ट है वो बाहर कर्मों की बात नहीं है. वो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं,
3: वो कैसे इंसान है,
4: जेन्युइनली आपका क्या थॉट प्रोसेस है. आप किसी को मिलते हैं, कोई गार्डी है, पियोन है, आप उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसका रोल है. लेकिन वो सोल को भी चाहिए तो क्या, प्यार चाहिए,
3: बिल्कुल,
4: एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. तो उसके प्रति भी हम अगर जरा सा नॉड करते हैं, गेट तो वही खोलेंगे क्योंकि वो उनका रोल है. लेकिन हर व्यक्ति के प्रति एक जेन्युइन दिल में रिस्पेक्ट होना, उनको एक्सेप्ट करना, उनको भी स्माइल करना, उनके प्रति भी प्यार होना, ये बहुत जरूरी है.
3: और इस विषय में अगर आप इसको और क्लैरिटी से समझना चाहते हैं तो बहुत कमाल की एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने रील देखी थी. साइमन सिनेक बोल के एक बहुत मोटिवेशनल, बहुत बड़े स्पीकर हैं, और वो एक कहानी बोलते हैं स्टायरोफोम कप के बारे में. तो अगर मौका मिले तो जरूर आप स्टायरोफोम कप वाली कहानी देखें, कि जो आपने रोल के बारे में बात कही, और वो बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि रिस्पेक्ट और रिगार्ड कैसे अलग अलग है. ये आपने आज मुझे बताया, लेकिन ये कहानी में बहुत खूबसूरती से वो समझाते हैं. तो जरूर मौका हो तो देखिएगा.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक महान मोटिवेशनल स्पीकर की इंस्पायरिंग कहानी से जिंदगी के कुछ अनमोल लेसन सीखते हैं, आइए MRM के इस एपिसोड में जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, साइमन सिनेक एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत खूबसूरती से वो एक कहानी कई बार कहते हैं, उसका नाम है स्टायरोफोम कप, और वो जो कहानी है वो बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े US मिलिट्री के कोई अफसर होते हैं और बहुत बड़े अहदे पे होते हैं, तो उनको किसी कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन आता है। तो जब इनविटेशन आता है तो उनको बिजनेस क्लास टिकट्स भेजे जाते हैं और उनको लेने के लिए बहुत शानदार सी गाड़ी आती है, एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया जाता है, उनका लगेज लेने के लिए कोई होता है, उनको बिजनेस क्लास में बैठाया जाता है, जब वो लैंड करते हैं तो उनका लगेज कोई और कलेक्ट करता है, उनके लिए बड़ी सी लिमोजीन गाड़ी खड़ी होती है जो उनको वेन्यू पे ले जाती है। वेन्यू पे जब ले जाते हैं तो वहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है जो उनका ख्याल रखने के लिए होता है, उनको डायरेक्ट वहाँ से बैक स्टेज ले जाता है और उनको एक पोर्सलिन कप में उनको चाय या कॉफ़ी दी जाती है, और जैसे उनका समय आता है उनको डायरेक्ट स्टेज पर ले जाते हैं, वो अपना कार्यक्रम जो है वो पूरा करते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं उनको इमीडिएटली गाड़ी में पिकअप किया जाता है, होटल लिया जाता है, चेक इन करने के लिए इंसान होता है, बहुत अच्छा कमरा मिलता है, फिर जब उनका समय वहाँ ख़त्म हो जाता है उनको पिकअप करके वापस एयरपोर्ट बिजनेस क्लास टिकट में वो अपने वापस जहाँ जाना होता चले जाते हैं। कट टू अगले साल, अब वो रिटायर हो गए हैं और उनको इन्विटेशन आया है, कोई टिकट नहीं भेजी गई, वो खुद अपना टिकट काटते हैं, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। जब वो लैंड करते हैं उनका लगेज लेने वाला कोई नहीं होता, कोई गाड़ी नहीं होती है तो वो टैक्सी में जाते हैं, उनके लिए कोई होटल बुक नहीं होती है तो खुद ही होटल जाते हैं, खुद ही चेक इन करते हैं, और वेन्यू पे जाने के लिए भी उनके लिए कोई गाड़ी नहीं आती तो वो टैक्सी से वेन्यू पे पहुंच जाते हैं, बैक स्टेज खुद पहुंचते हैं, और वहां पे उनको कोई कप नहीं दिया जाता टी या कॉफ़ी के लिए, तो कॉफ़ी मशीन के साइड में एक स्टायरोफोम कप पड़ी होती है, वो उसको उठाते हैं, कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी लेते हैं और अपने वक्त का इंतजार करते हैं। तो साइमन सिनेक बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि अल्टीमेटली हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम दरअसल स्टायरोफोम कप ही हैं, लेकिन जीवन के शानो शौकत में हम ये भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा ओहदा जो है वो इम्पोर्टेंट है, लोग हमारे लिए वेट करते हैं और हम बिजनेस क्लास के चक्कर में फंस जाते हैं। हम जब तक अपने आप को स्टायरोफोम कप से अपने आप को सीमित रखेंगे, आप याद रखें कि हम यहाँ हैं, हम इन चकाचौंध से फंसेंगे नहीं और आगे कभी भूलेंगे नहीं कि हमारी असल शुरुआत कहाँ से हुई थी और हमें जाना कहाँ है। बहुत खूबसूरत कहानी और बड़े प्यार से वो रस लेकर काफ़ी लंबे 7-8 मिनट तक समझाते हैं और बहुत ब्यूटिफुल उसमें से वो उसका संक्षेप सुनाते हैं। तो आई लव दिस स्टोरी एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी नीड टू गो।
4: See, the most important thing is not to get dependent.
3: Right, on everything.
4: मतलब अगर आपको मिल रहा है तो भी हर्जा नहीं है, आप उसको enjoy कर रहे हैं। अगर हम उसके लिए वर्क भी करते हैं, हम उसको अपने जीवन में अचीव भी करते हैं तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है।
3: But जैसा आप कहते हैं न्यारा प्यारा होके रखना
4: चाहिए। क्योंकि वो चीजें टेम्पररी है।
3: हाँ।
4: जो चीजें टेम्पररी है वो कम ज्यादा हो सकती है, वो कभी भी छूट सकती है, तो आपकी मन की स्थिति उस पर डिपेंडेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जब वो चीजें उनको नहीं मिलती और उनका मन कहना शुरू कर देता मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है,
3: जी,
4: मुझे तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो चीज दिक्कत करती। लेकिन अगर उनका मन समझता कि तब वो औहदे के कारण मुझे वो सब मिला था, आज औहदा नहीं है तो केवल एक्सटर्नल जो कम्फर्ट जो कोई गाड़ी
3: जो
4: है
3: बंद हो गई
4: वो नहीं मिल रहा है, और वो तो सबके साथ ही जीवन में होता है, पर वो चीज का मन पर हमारे असर हो और हम अपने को उन चीजों से वैल्यू करें जो हम करते हैं। हम अपने को बाहर हमें किस तरह से ट्रीट किया गया उस तरह से हम अपने को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, विच मीन्स हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: राजेश खन्ना ने जिंदगी के बारे में ऐसी कौन सी बात कही जो आज भी हर जेनरेशन के लिए एक सीख है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इससे मुझे राजेश खन्ना की बहुत खूबसूरत एक लाइन याद आ गई कि एक जमाना ऐसा था कि वो 3 साल तक सबसे बड़े सुपरस्टार थे इस देश में, और उनके घर पे जो ड्राइंग रूम था वो गुलदस्तों से भरा होता था, मतलब रखने की जगह नहीं होती थी। और फिर एक दौर आया और उन्होंने कहा कि वन डे द रोजेज जस्ट स्टॉप्ड कमिंग, एंड इतना हार्ट ब्रेक है उस लाइन में, दैट इज हाउ लाइफ इज।
4: नो, बट देन व्हाई द हार्ट ब्रेक ना, वही चीज का बड़ा क्वेश्चन है। जब हम ये समझते हैं कि लाइफ है ही, हार जीत है, क्रिटिसिज्म अप्रिसिएशन है, फिल्म भी कभी कोई चलती है नहीं चलती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी है, गुलामी है कि लोग मुझे प्यार करें, ये बहुत बड़ी एक गुलामी है। लोग मुझे प्यार करें, और आज अगर लोगों का प्यार मुझे नहीं मिल रहा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना है। सेल्फ लव हम किसको कहते हैं कि अगर आज नहीं भी कुछ ठीक चल रहा है
3: तो भी मैं खुश हूँ,
4: तो भी मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूँ, तो भी मेरी अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ऊंची है। बींग एबल टू सर्वाइव एंड एंड्योर एवरीथिंग, वो दिखाता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग है। बाकी तो लाइफ में हमेशा
3: कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा।
4: हाँ, बिल्कुल आपके अनुसार ही होगा, वो तो जरूरी है ही नहीं ना। तो ये चीज एक सीखना कि लाइफ है ही हार जीत, सफलता असफलता, अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म, ये कट्ठे कट्ठे चलते हैं, और इन दोनों में हमें स्टेबल रहना है, वो चीज समझना और अपने को उसके लिए प्रिपेयर करना जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, इस गाने में छुपे लाइफ लेसन्स को समझते हैं, आइए जानें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: किशोर कुमार की मिस्टर इंडिया में बहुत खूबसूरत सा एक गीत है जो कहते हैं कि जिंदगी की यही रीत है, कभी हार है तो कभी जीत है।
5: फिर ये केवल एक स्पोर्ट्स के एरिया में नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन फिर भी काफी ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, जो बहुत सीनियर लेवल पर खेलते हैं ना, वो दोनों चीजें देख लेते हैं, वो सफलता भी देखते हैं और वो हार में बहुत डिग्निटी से उस हार को एक्सेप्ट करना, उसके बाद सामने वाले को गुड विशेस भी देना, कंग्रेचुलेट भी करना। अच्छे प्लेयर्स वो देखते हैं क्योंकि उनको पता है कि आज गेम के एंड में दोनों तो नहीं जीत सकते। तो जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने को प्रिपेयर करता है कि चाहे हार हो या जीत हो, आई हैव टू बी स्टेबल। जीवन भी एक खेल है, उसमें भी उतार चढ़ाव है, उसमें भी कभी सिचुएशंस आपके अनुसार है, कभी नहीं भी अनुसार है, लेकिन उस सब के अंदर भी स्टेबल रहना, पीसफुल होना
4: बहुत जरूरी है।
5: उसको टॉलरेट करना और सही रीति से रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना, वो बहुत जरूरी है
4: जी।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लेगेसी नाम की किताब से जिंदगी और लीडरशिप के कुछ पावरफुल लेसन सीखते हैं, आइए MRM के इस एपिसोड में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बहुत कमाल की किताब है, मैंने पढ़ी थी, लेगेसी नाम की किताब है, जेम्स कर ने लिखी है, और ये एक न्यूजीलैंड की रग्बी टीम है, वो बहुत कमाल की, ऑल ब्लैक्स नाम का उनका नाम है, एंड दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम दैट प्लेड रग्बी फॉर न्यूजीलैंड, और वो किताब एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, उसमें लिखा होता है कि 15 लेसन्स फॉर लीडरशिप एंड बिजनेस। उस किताब में बताते हैं कि ऑल ब्लैक्स इतनी सक्सेसफुल टीम इसीलिए रही क्योंकि वो एक जमाने में ऐसा भी था कि वो जो शेड्स होते थे ना जहां वो ट्रेन करने आते थे उसको मिलके वो स्वीप करते थे, वो साफ करते थे, और उनमें इतनी कैमराडरी थी, इस वजह से वो कल्चरल एक लैंडमार्क भी बने और बिजनेस लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा उनको सीखने से उनसे मिला। एक तरफ ऑल ब्लैक्स हैं न्यूजीलैंड की रग्बी टीम, दूसरी तरफ हमारे पास आइकॉन्स हैं जो हाथ नहीं मिलाते गेम के बाद, जो कभी कभी बच्चों से रूडली बिहेव करते हैं, जो आपको पेपराजी पे चिल्लाते हुए नजर आएंगे एक्सेट्रा। जब हमारे पास स्पोर्ट्स आइकॉन होते हैं जो बहुत फेमस और सक्सेसफुल होते हैं लेकिन शायद थोड़े एरोगेंट होते हैं, उनके बारे में ज्यादा बात होती है बजाय ऑल ब्लैक्स के जो इतनी बड़ी टीम है लेकिन उनके बारे में ज्यादा हम सुनते नहीं है। ऐसा क्यों होता है?
4: There was this one time when I met somebody जो content बहुत directly लोगों तक पहुंचाते हैं, और मैंने भी उनको यही सवाल किया था, मैंने कहा कि आपके पास इतनी पावर है कि अगर आप कुछ अच्छा डालते हैं पॉजिटिव तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, हम में से किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है
3: जी।
4: तो उन्होंने बहुत ही, मुझे वो बात याद रहती है, उन्होंने स्माइल करते हुए कहा कि सिस्टर हम यहाँ सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा जो कंटेंट हम दिखाते हैं वो टोटली उस पर डिपेंड करता है डिमांड क्या है। जो लोग देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं वही हम उनको पिरोसते हैं। Which I feel is a very sad thing, क्योंकि दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर भी है, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उनके ऊपर भी है। अगर हम वैसा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो फिर वो वैसा ही बनाते चले जाते हैं। ये ऐसा है कि अभी जंक फूड कंज्यूम होता है तो जंक फूड बनाया जाता है, आज अगर वो कंज्यूम होना ही बंद हो जाए तो बनना भी बंद हो जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: गुलाबी साड़ी अणि लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
2: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4।
3: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी, गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी।
2: स्टारिंग अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ जुलाई। अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर।
4: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.

हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है, पल्लव है, वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पल्लव है, मैं अहमदाबाद से हूँ और कल मैं अपने कॉलीग के साथ कुछ बात कर रहा था और एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, हम दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुई उस वजह से वो बहुत जोर से मुझ पे चिल्लाने लगे, तो मैं क्या करूँ, ये एंगर मैनेजमेंट का किस्सा लग रहा है।
2: कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और सामने वाला थोड़ा हर्ट हो जाता है, भले हमारा इंटेंशन नहीं भी है, थोड़ा समय उन्हें ठंडा होने दे। बिकॉज अगर आप गर्म तवे पर भी अगर ठंडा पानी डालेंगे ना तो वो उछलता है। तो कभी कभी जब सामने वाला बहुत नाराज है, अपसेट है और हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि समझने के लिए भी मन थोड़ा शांत चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: सो एक दिन दो दिन का गैप डाले, और अगर उस बीच में गैप तो डालना है, द गैप इज टाइम का गैप तो डालना है, लेकिन उस टाइम के गैप में एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। जितना समय हम उनसे बात नहीं कर रहे होते, मन में जरूर बात कर रहे होते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: और वो जो मन में बात कर रहे होते हैं, वो कई बार हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव हो जाती है।
1: उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या जरूरत है, हर बार वो चिल्लाते हैं, जस्ट बिकॉज इज अ बॉस, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं सोचना।
2: छोटी छोटी बातों में कैसे अपसेट हो जाते हैं, इतनी जोर के चिल्लाने की क्या बात थी, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर इतने सेंसिटिव है, इतने दिन हर्ट रहते हैं, ये चलता रहता है, चलता रहता है। ये गर्म तवे को और गर्म करने जैसा है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन तो उन तक जाएगा ना। इसीलिए अगर इफ यू रियली केयर अबाउट दैट रिलेशनशिप, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप टाइम तो दे रहे हैं लेकिन साथ साथ आपके थॉट्स और वाइब्रेशन हील करते हैं। ये चीज हमें समझनी है कि हीलिंग थॉट्स और वाइब्रेशन से होती है। जैसे हम किसी स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं मंदिर में, तो हमें सुकून अनुभव होता है कि नहीं, तो वहां का वाइब्रेशन ही तो सुकून दे रहा होता है। वो वाइब्रेशन वहां के आने वाले लोगों ने ही तो बनाया होता है। सब आते हैं, कोई वहां पर पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उससे एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है। अब वो जो व्यक्ति थोड़े से दर्द में है, व्हेन आई थिंक नाइस अबाउट देम, हम उनकी जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं, जब भी उनकी स्मृति आए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट देम, अगर हम अच्छा सोचते हैं, वो जल्दी हील होंगे। और हीलिंग होने के बाद ही, हीलिंग मना जब आपको लगता है थोड़े से नॉर्मल हो गए, तवा ठंडा हो गया है, तब जरूर बात करनी चाहिए। कभी कभी हम बात नहीं करते, वो मिसअंडरस्टैंडिंग गांठ रह जाती है, तो वो गांठ को सुलझाना भी जरूरी है, तो अपनी बात कहकर के उसको जल्दी ठीक करने में ही अच्छा है।
1: जी, जगजीत सिंह की बहुत प्यारी गजल है, उसमें वो कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। तो बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं कि एक बार गांठ लग गई तो बहुत समय लगता है उसको खुलने में, तो थोड़ा समय देना जरूरी है।
2: इसमें दो बातें हैं, एक बात ये जो आपने कही वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात है, गांठ हो तो उसको खोल लेना चाहिए। कभी कभी अगर रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं और आपको पता ही होता है कि ये जो हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ, ये ईगो के कारण हुआ, कुछ है ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है कि आपकी मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, उस मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में वो आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने मुझे कुछ कह दिया, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा उस गांठ को सुलझाने के जगह उस गांठ को तोड़ के फेंकने में अच्छा है।
1: भूल जाओ उसके बारे में,
2: क्योंकि वो कुछ नहीं था, वो एक ईगो क्लैश था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो मिसकम्युनिकेशन नहीं था, वो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे गलत समझा, एक्चुअली हम एक दूसरे को समझते हैं, हमें पता है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है, तो उस समय किसी कारण से हमने कुछ ऐसा गलत बोल दिया, बट देन अगर अब हम फिर बैठेंगे ना उसको
1: सोचने के बारे में,
2: गांठ खोलने के लिए, तो कई बार वो राई का
1: और उलझ जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। बिल्कुल सही कह रही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Kichi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाला, अगर मैं ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो कि सामने वाला क्या बोल रहा हूं, मैं अपने मन में गीत गा रहा हूं, मैं अपने पे विचार पे कंट्रोल कर रहा हूं, तो सामने वाला कभी कभी चिड़के भी कह सकता है तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो भी बोलता हूँ, तब क्या किया जाए?
2: अभी वो उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, ये बात लेकिन बिल्कुल सही है, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर ट्राइंग टू प्रोवोक अस। वो जब अपनी बहुत अपसेट होते हैं तो वो हमें इंसल्ट करके या क्रिटिसाइज करके थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम प्रोवोक हो जाते हैं तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है
1: जी।
2: और अगर वो हमें नहीं कंट्रोल कर पाते, अगर हम इंटरनली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, इट इज नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, इट इज जस्ट कि अगर आप गलत तरीके से बात करते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती। वो मेरे मन की मास्टरी है, वो मेरा एफर्ट है, आई चूज टू स्टे काम। और ये हर फील्ड में होता है। आज क्रिकेट के फील्ड में कोई स्लेजिंग कर रहा है, आज ऑफिसर्स में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है, आज कहीं पर कोई बॉस डांट रहा है, तो हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ तो बिल्ड करनी पड़ेंगे ना। अगर हम वो बिल्ड नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब भी होते रहेंगे। तो हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आपकी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब जब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रोवोक नहीं कर पाते तो आप और अपसेट होते हैं। पर ये तो इमोशनली वीक हुआ ना, सामने वाला इमोशनली वीक हुआ, इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है।
1: तो ये सोचने के सामने वाला इमोशनली वीक है, वो बेचारा मन से बीमार है, और उसके प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट भेजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए।
2: पहले अपने को उसकी एनर्जी से डिटैच करना जरूरी है। हम किसी की हेल्प तब कर सकते हैं
1: जब हम स्ट्रॉन्ग है,
2: जब हम स्ट्रॉन्ग है। और कोई भी अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जोर जोर से बात करता है, वो पोजीशन में बड़ा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब पोजीशन के पावर में बड़ा हो सकता है पर इनर पावर में वो बहुत
1: वीक है।
2: सोल पावर में वो बहुत वीक है, नहीं तो वो बहुत काम से, डिग्निटी से, ग्रेस से बात करेगा। बात करें, बात ना करें ऐसा नहीं है, जो कहना है कहें, लेकिन ग्रेस डिग्निटी जरूरी है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: ब्रेकिंग न्यूज गाइज, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि मंडे से भी ज्यादा डेंजरस एक चीज है इस दुनिया में, वो है अलार्म बजने के बाद 5 मिनट और सोने की इच्छा। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स। अरे उठ जाओ यार, ये वो जगह है जहाँ पे तुम्हारी चाय और कॉफी को थोड़ा सा कॉम्पिटिशन मिलता है, बिकॉज ये उन दोनों से ज्यादा गर्म है। और अभी अगर फिलहाल तुम ट्रैफिक में फंसने वाले हो, ऑफिस के ईमेल्स खोलने वाले हो, या फिर अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हो, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों तक, और तुम्हारा दिन बन जाएगा मिर्चीदार, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें मिलने वाली है गॉसिप, गुड वाइब्स, मस्ती, म्यूजिक एंड मच मोर। एंड ऑफकोर्स हम बहुत सारी देसी बातें भी करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मुझे फॉलो कर लो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La virba, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है। कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आके ले लेंगे इसको?
3: कितने का है मेरा?
4: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप?
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने, मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती हैं बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में रख लो हमें ज्यादा। अरे यार हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है? हाँ संदीप जी,
3: अभी अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो कह रहा है लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
4: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़
4: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, ये पकड़ा।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
13: There's nothing like the magic of live theater.
14: Celebrate Prayog Theater Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
13: Join us on Friday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheater.com.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab mirchi kha.
18: Radio Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो करते हैं फटाफट से टाइम ट्रैवलिंग। सबसे पहले चलते हैं 1456 में, जब जोन ऑफ आर्क का नाम ऑफिशियली क्लियर किया गया। फिर 1892 में फिलीपींस में काटिपुनान नाम से एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनी, जिससे आजादी की मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन मिला। और 1898 में हवाई ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बना। मतलब आज जिस हवाईयन पिज्जा पे दुनिया डिबेट करती है, उसकी ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग है। 1928 में पहली बार कमर्शियली स्लाइस्ड ब्रेड बेचा गया, और तब से हर अचीवमेंट को कंपेयर किया जाता है द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड से। दैट रिमाइंड्स मी, मेरा ब्रेड खत्म हो चुका है। 1937 में मार्को पोलो ब्रिज के पास हुई एक मिलिट्री क्लैश ने सेकेंड साइनो जापानीज वॉर की शुरुआत की। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1981, जब सैंड्रा डे ओकॉनर को यूएस सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट किया गया, द फर्स्ट वुमन एवर। और 2005 में लंदन के 7/7 अटैक्स ने दुनिया को हिला दिया। आज का दिन उन सब लोगों को याद करने का भी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई उस दिन, और उन हीरोज को सल्यूट करने का भी है जिन्होंने मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाई। And that's it for your time traveling. फटाफट से मुझे follow करो। मिर्ची प्रिस is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 मिर्ची। That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विथ मिर्ची, July 4th इंडिपेंडेंस डे से August 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy or
9: confusion.
10: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Edison, New Jersey. Conditions apply.
13: Our business was getting ripped off before with

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है तुम्हारा मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर अभी फुटबॉल की बात करने वाले हैं।
2: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
1: सबसे पहले फीफा में एक एरा ऑफिशियली खत्म हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन एंड हो गया एज पोर्टुगल लॉस्ट 1-0 टू स्पेन इन अ नेल बाइटिंग राउंड ऑफ 16 मैच। रोनाल्डो साइंस ऑफ विथ 27 वर्ल्ड कप मैचेस, 11 गोल्स अक्रॉस 6 वर्ल्ड कप्स एंड हिस्ट्री बना गए एज द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप्स। ट्रॉफी हो या ना हो, लेगेसी सॉलिड गोल्ड की है। और स्पेन, दे आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स थैंक्स टू अ ड्रामेटिक लेट विनर बाय मिकेल मेरिनो। टॉक अबाउट लीविंग इट टिल द लास्ट मिनट। दूसरी अपडेट ये है कि यूएसए का वर्ल्ड कप सफर भी खत्म हो गया है आफ्टर अ 4-1 लॉस टू बेल्जियम। और मैच के बाद सोशल मीडिया फुल ऑन मीम मोड में आ गया था, विद सम फैंस जोकिंगली कॉलिंग इट डबल कोट्स में ट्रंप इफेक्ट या ट्रंप कर्स। ये रिएक्शन ऑनलाइन फैंस के थे आफ्टर रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड अ प्लेयर सस्पेंशन, नॉट एन ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट। और अब तक राउंड ऑफ 16 से कनाडा, पैराग्वे, ब्राजील, मेक्सिको, पोर्टुगल और यूएसए टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल्स की रेस अब और भी ज्यादा मिर्चीदार होने वाली है। वैसे तुम टीम मेसी, टीम रोनाल्डो या बस टीम मुझे पेनल्टीज ही समझ में नहीं आती है वाले हो, बताओ मुझे। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम। डीएम कर सकते हो तुम इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे, या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर लिखो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अपने मैसेजेस भेजो। मीनवाइल आई विल गो एंड प्ले सम मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: लिस्नर एम आई, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची का वेदर चेक ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तो फिलहाल आज के दिन स्काई जो है वो क्लाउडी है, करंट टेम्परेचर है 66 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन हवा थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्रामेटिक है, मेकिंग इट फील लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट। पिछले 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 27 मिलीमीटर्स की बारिश हो चुकी है। नेचर ने लिटरली फ्री कार वॉश दे दिया है और गुड न्यूज ये है कि अगले 24 घंटों में सिर्फ 1 मिलीमीटर की रेन एक्सपेक्टेड है। अभी जो हल्की बरसात चल रही है उसमें अम्ब्रेला को गोस्ट बिल्कुल नहीं करना है, उसकी भी फीलिंग्स होती है, उसे अपने साथ लेकर जाना है जहां भी जा रहे हो, बिकॉज यू वुड नीड इट। आज का टेम्परेचर रेंज इज 65 से लेकर 77 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में और फील होगा 64 से लेकर 75 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। वेदर का मूड आज एक्चुअल टेम्परेचर से काफी अलग अलग है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। वैसे आज का हाई इज ऑलमोस्ट कल के जैसा ही, तो वेदर जो है वो प्लॉट ट्विस्ट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। तुम्हें भी कंसिस्टेंसी दिखाना है विद योर वर्कआउट एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड वेयर योर सन प्रोटेक्शन एसपीएफ 50 प्लस के साथ वाला। एंड डू आई नीड टू से, मिर्ची की वाइब्स अपने साथ बना के रखो, मिर्ची लगाए रखो और मुझे सुनते रहो। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Hour का 3 only on Mirchi Mornings.
0: Mirchi Hour का 3.
1: सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने इंडोनेशिया विजिट के दौरान वंस अगेन रीटरेटेड दैट इंडिया सपोर्ट्स अ टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर इजराइल एंड पैलेस्टाइन विद डायलॉग एंड लॉन्ग टर्म पीस टेकिंग प्रायोरिटी. इस विजिट में डिफेंस कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर पार्टनरशिप, वीट सीड एक्सपोर्ट्स और इंडोनेशिया में IIM बैंगलोर का ओवरसीज कैंपस जैसे कई अग्रीमेंट्स भी अनाउंस हुए हैं. नंबर 2 पर पुणे बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन में एक नया ट्विस्ट आया है. पुलिस के मुताबिक डिजिटल एविडेंस और व्हाट्सएप चैट से ये क्लेम सामने आया है कि केस के दो मेन अक्यूज्ड चेतन एंड सिया अलेजेडली क्राइम से कुछ महीने पहले सीक्रेटली मैरिड थे. इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और अथॉरिटीज एविडेंस एग्जामिन कर रही है. एंड फाइनली नंबर 3 पर अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट ने 38 डेथ सेंटेंसेज और 11 लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्शन को अपहोल्ड किया है. ये ब्लास्ट इंडिया के सबसे डेविस्टेटिंग टेरर अटैक्स में से एक थे. इस खबर के साथ हम उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन फैमिलीज के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जो आज भी उस दर्द को जी रहे हैं. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIBRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो।
2: हाँ बोलो कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो इसे। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था। हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो इसे।
2: कब आया था? कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ुकु।
4: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेन करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या है?
2: कुकड़ुकु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Oh no!
14: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
15: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Edison, New Jersey. Conditions apply.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है तुम्हारा फिल्मी पिट स्टॉप ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुंबई की बारिश भी शायद ब्लेसिंग मोड में थी क्योंकि आमिर खान एंड गौरी स्प्रैट अपनी शादी के बाद पहली बार पब्लिक में साथ में नजर आए। न्यूलीवेड्स वर स्पॉटेड इन बांद्रा, रेन हो रही थी, कैमरास फ्लैश कर रहे थे और दोनों काफी हैप्पी हैप्पी लग रहे थे। कपल ने 5 जुलाई को ही आमिर के बांद्रा रेजिडेंस में एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी की जहां पर सिर्फ क्लोज फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल थे। नो ओवर द टॉप ड्रामा, नो 100 डांस परफॉर्मेंसेस, बस प्यार, प्राइवेसी और हैप्पी वाइब्स। एंड ऑनेस्टली यार, बारिश में न्यूली मैरिड कपल की पहली अपीयरेंस, बॉलीवुड को इससे बेटर मूवी ओपनिंग सीन कभी मिल सकता है क्या? और बॉलीवुड के न्यूली वेड कपल की बात अगर हम कर रहे हैं तो ज्वेलरी की बात कैसे ना करें। ज्वेलरी से मुझे याद आया, आरके ज्वेल्स लेकर आए तुम्हारे लिए, गेट रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस, जीरो लेबर चार्जेस, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस, ओनली इन गोल्ड एंड डायमंड्स की वैल्यू। फटाफट से पहुंचो आरके ज्वेल्स पर फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियसली अप्लाइड। डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज द नंबर, 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
2: कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआ ले लो, फेल जिन्ना मर्जी पिया ले लो, पिया ले लो।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। Visit viraniejewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है.
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। अगर तुम्हारा आज यानी कि 7 जुलाई को हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले मिर्ची मॉर्निंग्स की तरफ से एक जायंट वाली झप्पी और पप्पी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसका हैप्पी बर्थडे है, आज बहुत अमेजिंग लेजेंडरी लिस्ट है मेरे पास। सबसे पहले क्रिकेट की दुनिया के कैप्टन कूल, तुम्हें पता ही होगा MS धोनी का आज हैप्पी वाला बर्थडे। वो आज ही के दिन इस धरती पर आए थे। हेलीकॉप्टर शॉट हो या प्रेशर सिचुएशन हो, वो हमें बताने आए थे कि कैसे रहना। बंदा इतना काम रहता है कि लगता है स्ट्रेस भी उनसे परमिशन लेकर आता है उनकी लाइफ में। वैसे म्यूजिक लवर्स के फेवरेट कैलाश खेर भी आज ही के दिन इस धरती पर आए थे। अगर तुम भी उनकी दीवानी हो या दीवाने हो तो आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। उनके कुछ गाने सुन सकते हैं हम। कन्नड़ा सिनेमा को ग्लोबल मैप पर और भी ज्यादा चमकाने वाले ऋषभ शेट्टी, द क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड कांतारा टाइप की मूवी, उनका भी आज ही जन्मदिन होता है। और फिर हॉलीवुड के फैंस पीछे चले जाएंगे, एक्टर एलन पेन, जिनको तुमने न्यूयॉर्क सिटी में देखा होगा, वैम्पायर इन ब्रुकलिन में देखा होगा एंड द परफेक्ट स्टॉर्म में देखा होगा। अब बर्थडे रेजोल्यूशन सिंपल है, एक्स्ट्रा केक खाओ, सेल्फीज लो, कैलोरीज को कल के लिए पुश फॉरवर्ड कर दो और आज के लिए खुश रहो जैसे मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश रहते हैं। मिर्ची चलाओ, मिर्ची दर बैंगर्स मैं तुम्हारे लिए चलाने वाली हूँ। मुझसे कनेक्ट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, 9033647224। Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन बढ़ते हुए दाम फिलहाल गोल्ड के हैं। और क्या है आज का लेटेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर का रेट? लेट्स फाइंड आउट मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रसला के साथ में।
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,150 $4,150 पर अउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। जब भी हमने ज्वेलरी खरीदनी होती है तो गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज उसी के हिसाब से लेबर चार्जेस भी उसमें कैलकुलेट होते हैं। और अगर आपके पास पुराना गोल्ड पड़ा है जो आप यूज नहीं करते, राज ज्वेल्स की स्पेशल एक्सचेंज ऑफर जिसमें आप अपनी 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी ज्वेलर से खरीदी हो, राज ज्वेल्स के साथ आके फुल एक्सचेंज वैल्यू आप गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं और नए डिजाइन के गहने ले जा सकते हैं। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर के लेटेस्ट रेट्स फ्रॉम द ज्वेलर्स माउथ इटसेल्फ। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ और ये है मिर्ची आवो का 3 एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक फ्रेश स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईदर मेक अ डील और फिनिश द जॉब। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट के बजाय अग्रीमेंट को प्रेफर करते हैं। एज एक्सपेक्टेड, इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेशनल सर्कल्स में काफी डिस्कशंस शुरू हो चुके हैं। नंबर 2 पर इंडिपेंडेंस डे के बाद वॉशिंगटन ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन शायद ये वाला किसी की विश लिस्ट में नहीं था। मैसिव 4th ऑफ जुलाई फायरवर्क्स के बाद कुछ घंटों के लिए वॉशिंगटन दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर सिटी बन गया था। एंड फाइनली क्रिकेट से, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। श्रेयस अय्यर कैप्टन होंगे, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, यंग टैलेंट वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह एंड मयंक यादव स्क्वाड में है। इस बार संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिली है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला। मैसेज करो या टैग करो मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: हेलो हेलो
3: बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल भी आखो है, एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी?
3: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ू?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: There's nothing like the magic of live theater.
9: Celebrate Priyog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud Comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
10: Join us on Friday,
8: July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at PriyogTheatre.com.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Iselin.
17: Listener mein back to back gana sunega, back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Of course, this is Mirchi Mornings और exclusively यहाँ पर तुमको मिलता है मिर्ची राशि जोन, जहाँ पर हम बातें करते हैं सितारों
2: की. मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज थोड़ा सा चिल मोड में रहो यार. हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती, टीम वर्क से काम जल्दी बनेगा. लकी कलर फॉर यू इज वाइब्रेंट येलो एंड लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज किसी से मीठी मीठी बातें इंस्टेंटली ट्रस्ट बना देंगी तुम्हारा. फैक्ट्स को चेक करना लेकिन, क्योंकि हर ब्रो ट्रस्ट में ट्रस्टवर्दी नहीं होता है. लकी कलर इज सेज. लकी नंबर इज 42. जेमिनी यानी मिथुन राशि, शाइनी अपॉर्चुनिटी सब गोल्ड नहीं होती है. वॉलेट और विजडम आज दोनों चीजों का ध्यान रखो, दोनों को साथ में लेकर चलो. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन. लकी नंबर इज 9. कैंसर यानी कर्क राशि, बिग प्लान्स अमेजिंग, बट थोड़ा सा पेशेंस भी रखो. मिड वीक के बाद एक्शन लेना ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है. कभी कभी स्लो कुकर पर खाना बनाना बेस्ट होता है. लकी कलर फॉर यू इज गोल्डन मस्टर्ड. लकी नंबर इज 26. लियो यानी की सिंह राशि, कॉन्फिडेंस इज योर सुपर पावर और ओवर कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग यू लॉसेस. आज बोलने से पहले एक बार रिवाइंड बटन दबा लेना. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 14. वर्गो यानी कि कन्या राशि, जो प्रॉब्लम तुम अवॉइड कर रहे हो वो शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो, तो फेस इट विद अ लॉट ऑफ ब्रेवरी. फ्यूचर वाला यू विल बी वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंट वाला यू. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 14. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 1. बाकी बची 6 राशियां आएंगी पार्ट 2 में, जो आएगा थोड़ी सी देर के बाद. बट थोड़े से मिर्चीदार बैंगर्स अभी फिलहाल तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ. मैं बोलो तो प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4 आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 carat एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 carat एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4 इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
7: टी सीरीज प्रेजेंट द माल 4।
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
7: Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: Tera kya hoga, Kalya?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: अब मिर्ची का
11: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: लाइफ का जीपीएस तुम्हें किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, लेट्स रीकैलकुलेट। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी तुला राशि, ऑफिस या सोशल सर्कल में टॉक्सिक एनर्जी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना आज के लिए बहुत बड़ा स्मार्ट मूव होने वाला है। पीस इज नाउ अ लग्जरी। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा, लकी नंबर इज 23। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज क्विक थिंकिंग तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होने वाली है। अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो स्नूज मत दबा देना। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सब एडवाइस फ्री होती है लेकिन सही नहीं होती है। आज अपनी खुद की इंट्यूशन पर फुल भरोसा रखो, दिल और दिमाग दोनों को आपस में कनेक्ट करो, कंसल्ट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 12। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज जितना प्रॉमिस कर सकते हो उतना ही बोलो। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, बॉस भी खुश और तुम भी खुश। लकी कलर इज स्लेट ग्रे, लकी नंबर इज 12। एंड अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, अगर कोई अचानक एक्स्ट्रा स्वीट बन रहा है तो बस आंखें खुली रखना, काइंड रहो बट बाउंड्रीज भी जरूरी है। लकी कलर फॉर यू इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 45। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मीन राशि, छोटी सी सेटबैक को ब्लॉकबस्टर ट्रेजेडी बना देना ये तुम्हारा टैलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं करने का है बेबी, सब ठीक हो जाएगा और शायद एक्सपेक्टेड से जल्दी हो जाएगा। सो जस्ट ब्रीद एंड बिलीव दैट यू हैव गॉट दिस। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 2। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे जाकर देख भी लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: यार ये टाइम इतनी जल्दी क्यों फ्लाई कर जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और लगता है अभी तो हमने चाय बनाई थी, अभी तो हम आकर बैठे ही थे, और देखो अब जाने का टाइम हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। आज का शो खत्म होने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम हॉलीवुड। ब्रैड पिट और ज्वेलरी डिजाइनर इनेस डे रमोन, जो 2022 से एक साथ देखे जा रहे हैं, हैव नाउ मेड देयर रिलेशनशिप इंस्टाग्राम ऑफिशियल। दुनिया में अब रिलेशनशिप के दो ही लेवल बचे हैं, इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड है पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। इस अपडेट के बीच में एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन है कि ब्रैड पिट की फॉर्मर वाइफ एंजेलिना जोली ने रिसेंटली शेयर किया था कि 2016 के सेपरेशन के बाद उन्होंने किसी को डेट नहीं किया, और इनेस भी अपनी प्रीवियस मैरिज के बाद एक नई बिगिनिंग के साथ लाइफ एंजॉय कर रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, हर लव स्टोरी का अपना एक टाइमलाइन होता है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन होती है, कोई लोकल ट्रेन होती है, और कोई पॉटहोल्स पर उछलती हुई ऑटो रिक्शा होती है। यानी कि कभी कभी कोई पहले इंस्टाग्राम पे आ जाती है और फिर फैमिली को पता चलता है, और कभी कभी फैमिली को बहुत टाइम से पता होता है और फिर इंस्टाग्राम ऑफिशियल कर ही दिया जाता है, और कहीं कहीं पर सिर्फ मजाक चल रहा होता है, यानी कि सिचुएशनशिप। एंड ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग ड्राइव, योर किचन प्ले लिस्ट, या फिर योर ऑफिस कम्यूट। तुम्हारे बिना मिर्ची मॉर्निंग अधूरी है यार। मैं बोलूं तो प्रिसिला साइंस ऑफ यहाँ पर। यू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग विद मी, फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: बचपन में हमने सुना था कि किसी बंदे को अगर जज करना हो ना तो उसके शूज से करें। आप अभी भी ये फॉलो करते हैं या आपने भी इंस्टाग्राम फॉलोअर से जज करना शुरू कर दिया है?
1: सारा ज़माना ऐ सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और शूज से किसी बंदे की पर्सनालिटी चेक करने का मतलब मुझे तब तो समझ में नहीं आया था जब इसके बारे में सुना था बचपन में कि आखिर शूज में देखना क्या है। और मेरे भी स्कूल शूज के सोल्स मोची की स्टिच से सिले हुए होते थे, तो ये पॉइंट तो मैं काउंट ही नहीं करती कि अगर जूतों में जोड़ है तो इंसान की शख्सियत ही सही नहीं। लेकिन आज जब मैं एक पब्लिक प्लेस में थी तब अचानक मैंने एक बंदे के शूज नोटिस किए जो बहुत गंदे लग रहे थे। हालांकि उसके कपड़े एकदम टिप टॉप थे और मेरे दिमाग में एक डायलॉग पॉप अप हुआ अपने आप कि कितना लेजी है ये बंदा। और सच कहूं तो मुझे ये बात एक्चुअली आज समझ आई कि जब आपको जूते देखकर पर्सनालिटी जज करने को कहा जाए ना तो इट्स अ हम्बल वे टू जज द पर्सन, ना कि जजिंग द पर्सन फॉर हिज वेल्थ। लाइक आई रियली लाइक वेयरिंग कोल्हापुरीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लैट सैंडल्स, जिसका मतलब ये हुआ कि आई लाइक माई कम्फर्ट मोर देन लुक्स, और हील्स मुझे इसलिए इतनी अपीलिंग नहीं लगती है। वैसे आपके सामने इस वक्त जो भी इंसान है उसके फुटवेयर देखकर आपको उस इंसान के बारे में क्या समझ आ रहा है? आई एम क्यूरियस टू नो। DM करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड लेट्स किक स्टार्ट मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए। वैसे 90s में तो हमने आज हो रही काफी सारी चीजों को नहीं सोचा, लेकिन आज जीने के बाद अब काफी कुछ सोचा है। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आज वीसीआर पर मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें हीरोइन का नाम दया शंकर था और हीरो का नाम उमा पार्वती।
1: मिर्ची वीसीआर।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा और राम गोपाल वर्मा की दौड़। देखो, दौड़ अपने टाइम में दौड़ी तो डेफिनेटली नहीं, बट बेचारी चली भी नहीं। उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त स्टारर ये मूवी लोगों को भले ही उस टाइम पर नहीं समझ में आई हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। लाइक चाको की एंट्री वाला सीन आपको याद है? वो सीन मुझे बहुत ही हिलेरियस लगा था। एंड बाय द वे, आपने मूवी के म्यूजिक में दौड़ को दौड़ सुना होगा? Well, that was actually a mispronunciation by Rehman साहब, जिसे लोगों को ये लगा था कि ये मूवी जो है it's about the Don दाऊद इब्राहिम। ये मूवी तो दाऊद पर नहीं थी, लेकिन इस मूवी से राम गोपाल वर्मा को अपनी सत्या के लिए एक डॉन जरूर मिल गया था। कौन था वो बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
7: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
9: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bari raja photo mazaka.
16: T-Series present The Mall 4.
17: Ulaadi bina chatni kaise bani?
16: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: रहते हो।
1: रामगोपाल वर्मा मनोज बाजपेयी को दौड़ में कास्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं कि उनका काम अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसीलिए कि उनका काम इतना अच्छा लगा कि दौड़ का छोटू मोटू सा रोल देने के लिए उन्हें लगा कि यार ये ऐप नहीं है, इन्हें तो भिखू मात्रे का रोल देना चाहिए। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड मनोज बाजपेयी जब दौड़ के विलेन के छोटे से रोल के लिए राम गोपाल वर्मा से मिले थे, तो आरजीवी वाज शॉक्ड टू नो कि मनोज इज द सेम गाय फ्रॉम बैंडेड क्वीन, और उन्होंने मनोज को कहा कि वो यार इतना छोटा रोल डिजर्व नहीं करते हैं, एंड देयर आर बेटर थिंग्स लाइंड अप फॉर हिम लाइक भिखू मात्रे इन सत्या। लेकिन फिर भी मनोज वांटेड टू डू दिस छोटू सा रोल बिकॉज उनके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे एंड ही नीडेड द मनी, और यूं मनोज बाजपेयी दौड़ और सत्या का हिस्सा बने। हालात उस टाइम पर ऐसे थे कि बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान भी हानिकारक था उनके लिए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स ऑल।

0: आपको पता है कि जब कोई बाथरूम जाया करता था तो हमें ऐसा क्या होता था कि बाथरूम की लाइट बंद करना कंपलसरी सा लगता था हमारी बॉडी को?
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, हम 90s किड्स के दिमाग बड़े वेले हुआ करते थे यार, और शायद यही वजह थी कि हम अपने भाई बहनों को परेशान करने के लिए नए नए तरीके निकाला करते थे, और उनमें से एक तरीका था बाथरूम की लाइट बंद करके भाग जाना। पर मुसीबत तो तब होती थी ना जब कोई हमारे साथ बदला निकालते हुए सेम चीज करता था। तब सोने पर अभागा ये होता था कि यार लाइट तो वो लोग बंद करके जाते ही जाते थे, और साथ में रिसेंटली वॉच्ड हॉरर मूवी के किसी कैरेक्टर का नाम भी याद दिला दिया करते थे कि देख देख पीछे से सामरी का हाथ आ रहा है। और ये जानते हुए कि एक प्रैंक है, मैं वो सब इमेजिन कर लिया करती थी जो उन लोगों ने कहा है। मैंने कहा ना, हम 90s किड्स बड़े वेले हुआ करते थे। वेलेपन में आपकी क्रिएटिविटी कैसे काम में लिया करते थे? डू डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। एंड नाउ कम्स दैट गाना जो मेरे 90s के दिल को एक्सप्लेन करेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डियर आम पापड़,
1: यादों को चिट्ठी।
0: तुम आम नहीं, बड़े खास हो, बचपन का खट्टा मीठा एहसास हो। पर जाने मार्केट में क्या हलचल हुई कि अब तुम फिजिकली दूर हो, लेकिन स्टिल दिल के पास हो। वो पीली पन्नी में बंद के तुम आते थे और अपने अंदर खट्टे मीठे स्वाद जो तुम लाते थे, आज इंटरनेशनल चॉकलेट्स तक घर पर आ जाती हैं, पर उनमें भी तुम जैसी बात नहीं आती है। परत परत बारीकी से निकाल कर तुम्हें हम खाते थे, एक पैकेट जितना लंबा चल सके यही हम दिल से चाहते थे। बिंजिंग के नाम पर आज जाने क्या क्या खा लिया जाता है, फिर भी रूह कहती है मजा नहीं आता है। तुम आ जाओ नजर किसी किराने की दुकान पर तो मजे भी कहेंगे कि देखो हमारा प्यारा आम पापड़ आया है। कई दुकानों पर तुम्हारे लिए पूछा लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। और फिर एक दिन मेरी कजिन ने तुम्हें और तुम्हारे जायके को जुबान पर जब बिठाया ना, तो तुम्हारी यादें और ताजा हो गई। मिस यू माय बचपन के डिजर्ट एंड स्नैक, प्यारे आम पापड़, तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो मजा काय।
9: टी सीरीज प्रेझेंट धमाल 4।
10: गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी, गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी।
9: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ जुलाई। अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर।
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: देखो प्यार हुआ इकरार हुआ लेकिन प्यार के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं और मैं इन दोनों गानों के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कैसेट के साइड ए का ये चौथा गाना इज दिल क्या करे।
0: मिर्ची 90s कैसेट
1: अदनान समी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म सलामे इश्क इज सच अ मेलोडियस ट्रीट टू आवर इयर्स। हाँ एंड वाकई में ये सारे के सारे जो सिम्टम्स इस गाने में बताए गए हैं ये सब प्यार के साइड इफेक्ट्स हैं कि बाहर कुछ और हो रहा है और अंदर हमारे कुछ और ही हो रहा है, टोटली ऑपोजिट। जैसे कि ये
2: सीनी सीनी जब ती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में
1: जरा सोचो, बरसात में भी कोई जलता होगा? ऑफ कोर्स, जिसने मोहब्बत करी है वो बरसात में ही जलता है। और जब प्यार होता है ना तो इंसान कहाँ होता है उसे खुद भी पता नहीं होता है यार, क्योंकि इंसान जहाँ होता है वहाँ पर तो उसका ध्यान लग नहीं रहा होता है। दिन भर कुछ मिस करता है, जाने कैसी ख्वाहिश करता है, भीड़ में तन्हा रहता है, दिल क्या करे। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू, लेकिन इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा अगर मुझे कहीं ढूंढना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ना, बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हमारे यूसुफ खान साहब, पठान साहब, ये दिलीप कुमार कैसे बने? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये नाम बदलने की वजह सुनी उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या शेयर की थी।
1: हकीकत बताऊँ, पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। मेरे वालिद फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे और उनके अजीज दोस्त एक लाला बशीशरनाथ थे, जिनके साहेबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे, और वो अक्सर बशीशरनाथ जी से बड़ी शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज़ बहुत हो गए। उस वक्त दो तीन नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने अपनी ज़ाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए।
0: और इस तरह ये दिलीप कुमार बन गए, कभी देवदास के देवा, कभी मुगले आजम के सलीम बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
2: हाँ हाँ सुना,
1: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तो चले,
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, July 4th इंडिपेंडेंस डे से August 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
7: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
9: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: The Kohinoor of Indian Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.

0: दिलीप कुमार साहब ने अपने 50 साल के करियर में कुछ 50-60 फिल्में की होंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, बिकॉज ही बिलीव्ड इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सुनिए इस बारे में एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: मिर्जा गालिब लिखते हैं कि अगर हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए, हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। If you have the same artist for breakfast, and the same artist for lunch, and the same artist for dinner, I mean, if that is the frequency, कि हर साल उनके 6-7-8 फिल्म हैं, हर फिल्म में वो ऐसा predictable काम करते हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि इस फिल्म में तो वो उस फिल्म की झलक है, और इस झलक में उस फिल्म से एक कॉमन पर्सनैलिटी बन जाती है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी टकसाली काम होता है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट तवज्जो से चुनेंगे, लोगों के आगे अलग अलग चीज़ें फिल्म या किरदार पेश करते हैं, वो एक रीजन होता है लॉन्जिविटी का।
0: कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, और आप फिलहाल एक काम करो, मुस्कान को ले जाओ कान तक और कान रखो मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: हसी।
1: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
2: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bhari raja photo maza ka.
6: T-Series present Dhamaal 4.
7: Gulabi bina chatni kaise bani.
6: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, ओजी हैंडसम, दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स, ओनली ऑन मिर्ची

0: द मोस्ट फिनोमिनल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा दिलीप कुमार साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और उनके मोस्ट फिनोमिनल रोल्स में से एक है देवदास फिल्म का रोल। इसके बारे में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया इस फिल्म के बारे में, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: देवदास फिल्म थी, शरद चंद्र चटर्जी की कहानी थी। फिल्म जो होता है वो लिटरेचर पर मबनी होता है, डिपेंड करता है। जितनी के क्लासी की कहानी थी तकरीबन लगभग उससे मिलता जुलता उसी वजन का वो फिल्म भी बना। और मुझे लगता है आपको देवदास पसंद है ज़ाती तौर पर, और मुझसे पूछेंगे तो ज़ाती तौर पर देवदास मुझे भी पसंद है। कुछ लोगों को अब भी पूछिए तो कहते हैं कि देवदास बहुत बेहतर है। हमारे दोस्तों का एक हल्का है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं सबसे अच्छा तुम्हारा फिल्म जो था वो कोहिनूर था, और वो फिल्म कोई ट्रेजिक फिल्म देखना ही नहीं चाहते। कई लोग हैं कहते हैं कि क्या हम दिन भर के काम काज के बाद जाएं तुम्हारे रोने धोने का फिल्म देख के, हम तो पहले पूछ लेते हैं भाई कि इसमें क्या काम कर रहे हो तुम।
0: वैसे 1960 की कोहिनूर फिल्म वही फिल्म है विच वॉज सॉर्ट ऑफ अ डिपार्चर फ्रॉम हिज ट्रेजिक रोल्स। इसमें उनका रोल बहुत लाइट हार्टेड कॉमिक था। एक क्लासिकल सॉन्ग इन पर पिक्चराइज हुआ था जिसके लिए इन्होंने स्पेशली सितार प्ले करना सीखा था। सुन लेते हैं वो गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: आपको पता है दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छी शायरी करते थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे और बहुत अच्छा गाते भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर उनको ऐसा नहीं लगता था। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनको गाने को कहा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: गाने वाने का काम मेरा नहीं है, मैं अंग्रेजी में कहते ना जो टॉयलेट रूम सिंगिंग, वो हमारी वही है, आप उसको वहीं रखिए।
0: वेल, इसके बाद काफी रिक्वेस्ट इसरार करने के बाद आखिर उन्होंने कुछ गा के सुनाया, सुनिए।

0: फिर उन्हें सलाम करूं।
1: अब सलामी की बात हो रही है तो ये गाना सुन लेते हैं, राम और श्याम फिल्म का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर.

0: जाने।
1: ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मेरी ट्रेजेडी यही है कि अक्सर ऐसा हुआ कि जो गाने मुझको पसंद आते हैं, पिक्चर से पहले मैंने नौशाद साहब से भी कहा कि मुझको ये कैसा गाना आपने दिया है, सामान ले चले नौत का सामान ले। और नरगिस को आप अच्छे से गाने देते हैं या निमी को या नादरा को अच्छे गाने देते हैं, तो कहीं नहीं भाई लिखिएगा ये अच्छा। और मेरे जो पसंद के होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो मुझको अपने गाने अच्छे नहीं लगते वो सब हिट हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी अलामत है, इट्स ए वेरी हेल्दी इंडिकेशन इफ आई स्टार्ट ऑफ बाय नॉट लाइकिंग ए सॉन्ग इट बिकम्स अ बिग हिट।
1: इसी बात पे इनका ये माइंड ब्लोइंग सुपरहिट गाना सुन लेते हैं, जिसके बगैर हर शादी हर बारात अधूरी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: सिनेमा OG हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च अप्रैल में,
2: हाँ, सुना,
1: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज, हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
8: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा दिलीप कुमार साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अपने करियर में जो रूल जो फिलोसफी वो फॉलो करते थे वो था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और पता नहीं कितने रोल्स उन्होंने रिजेक्ट किए, इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: कभी ऐसा होता है कि वो रोल नहीं पसंद आता। अब मदर इंडिया में उन्होंने मुझे रोल कहा कि ये रोल करना है। He was very determined about it, and so were his our colleagues. But I knew it that it is not this a sensible thing for me to attempt, because Nargis and I were a combination at that time. I had done about 6 films with her, and some of them were good romantic films, and they were not out of the memory of people. Now, उसमें अगर मैं ऐसा पिक्चर हूँ कि मैं उसको माँ माँ करूँ या वो मुझे बेटा बेटा करके तो बात करे, आई थॉट दैट दिस विल नॉट गो वेल विद द पीपल। सो देर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू एक्सरसाइज योर जजमेंट एंड इवैल्यूएट इट नो मैटर हु यू आर वर्किंग विद।
0: आप सोचिए 50 साल के करियर में इस बंदे की 50-60 फिल्में आई, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद कितने ऑफर्स इनको आते होंगे, कितने रोल्स इन्होंने रिजेक्ट किए होंगे। पैसे वैसे का कोई लालच नहीं है। हैट्स ऑफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ, चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
5: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: अभिनय सम्राट, the legendary Dilip Kumar special. चारू के साथ, चारू के साथ पुरानी जीन्स पर. Only on Mirchi.

0: भाई दिलीप कुमार साहब के बारे में कहा जाता था कभी कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, कभी कहा जाता था कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, और कभी कहा जाता था कि वो बहुत एरोगेंट हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यही सवाल जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: इंसान की पर्सनैलिटी होती है या उसकी शख्सियत होती है, उसमें मुख्तलिफ पहलू होते हैं। हंसी खेल का एक पहलू होता है, लुत्फ लेने का पहलू होता है, फिर संजीदगी का होता है, फिक्रमंदी भी होती है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, गुरूर या घमंड जो है वो इंसान की शख्सियत में एक बीमारी, एक मर्ज है, उससे बचने का। अब जो लोग मुझे ज़ाती तौर से जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो लोग मुझे ज़ाती तौर से नहीं जानते वो नहीं जानते। और इस पोजीशन में ऐसे होता है कि आप ज़्यादातर जाके लोगों से मिलकर बात करें या अपनी किसी मसले की वजाहत करें, ये एक नामुमकिन सी बात है। तो आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी में ये तजाद जो है वो रहता है। लेकिन गुरूर और घमंड का अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए तो मुझे उस बात का वाकई सदमा हुआ।
0: बिल्कुल सही बात है यार, इंसान अपने अपनों के आगे, अपने लव्ड वंस के आगे तो एक्स्ट्रोवर्ट ही होता है ना। हर किसी से थोड़ी ना अपना सब कुछ शेयर करते फिरेंगे। फिलहाल मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो है एक स्माइल। आप भी स्माइल कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगली बार से जब भी मैं दिलीप कुमार साहब का कोई इंटरव्यू सुनूंगी ना, तो साइड के टैब में उर्दू डिक्शनरी खोल के रखूंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। क्या क्या लफ्जों का इस्तेमाल करते थे वो। तो ऐसे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्योंकि वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके फादर ये थिएटर एक्टिंग वगैरह के सख्त खिलाफ थे, और यूजुअली ऐसा समझा जाता है कि पठान जो है अंदर से चाहे भोले मासूम कुछ होते हैं और बाहर से एकदम रफ एंड टफ, तो ये एक्टिंग करने वाली एक जो सेंसिटिविटी होती है ये इनके अंदर कैसे आई, इस बारे में सुनिए दिलीप कुमार साहब ने यूसुफ खान साहब ने क्या कहा था।
1: पठान लोग आमतौर से फनून लतीफा से उनकी इतनी वाबस्तगी नहीं जितनी के जफाकशी या जवां मर्दी से उनका नाम मुतालिक किया जाता है। लेकिन मैं खुद भी इस बात को समझ नहीं पाया, ये सोचता हूँ कि सूए इत्तेफाक में एक फिल्म एक्टर बन गया, और कुछ शायद मेरे बचपन के वाकयात और जो हादसात उनकी कुछ नौयत इस किस्म की थी कि अंदरूनी तौर से मुझ में एक जज्बाती कैफियत जो थी वो ज्यादा शदीद थी।
0: उफ उफ उफ उफ, फनून लतीफा, बाबस्तगी, जफा कशी, कैफियत शदीद, मर गई मैं। वैसे छोटे होते से ये एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बड़े होके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि ये सिर्फ एक्टर नहीं बने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर बने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिली.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bhari raja photo maza ka.
9: T-Series present Dhamaal 4.
10: Gulabi bina chatni kaise bani.
9: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
0: Abhinay Samrat. The legendary Dilip Kumar Special. Charu ke saath. Purani Jeans par. Only on Mirchi.

0: दिलीप कुमार साहब जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई शायरी बोल रहे हैं, कविता बोल रहे हैं, कुछ पोयम बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी जुबानें उनकी इतनी साफ, इतनी प्यारी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनको ये जो फेम, इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं।
1: शोहरत और नाम जो है, इससे एक अच्छे आर्टिस्ट को या किसी भी आदमी को हमेशा गैर मुतालिक रहना चाहिए। शोहरत वो मेरी है, अगर मैं ये समझने लगूँ तो मेरी सेहत के खिलाफ बात होगी। अल्लाह की कुदरत है, मैं पैदा हुआ जिस घर में वो, उसमें मेरा इरादा नहीं था, मैं अपने इरादे से आया नहीं, मैं अपने इरादे से यहाँ नहीं पहुँचा, और जिस दिन इस दुनिया से जाना है उसका मेरा कोई, मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो शोहरत हो या बदनामी हो, रसवाई हो, वो दी हुई, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से है। कोशिश अपने तो यहाँ मेरा फ़र्ज है, मैं कोशिश करता रहा हूँ। मैं यही चाहूँगा कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ, बेहतर काम कर सकूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे हम लेंगे ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
2: हाँ हाँ सुना।
1: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit viranijewelers.com.
1: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
7: गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काय।
8: टी सीरीज प्रेझेंट धमाल 4।
9: गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी, गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी।
8: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ जुलाई। अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab, mirchi kha.
14: Radio Mirchi, it's hot.
0: The Kohinoor of Indian Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.

0: दिलीप कुमार साहब ने पता नहीं कितने एक्टर्स को इंस्पायर किया है, अपने कंटेम्प्रेरीज लाइक बलराज साहनी साहब को भी और आने वाली जेनरेशंस, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, कमल हासन, आमिर खान, शाहरुख खान, और इसीलिए दिलीप कुमार साहब को क्योंकि वो इतने फिनोमिनल एक्टर थे, उनको कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, अभिनय सम्राट और खास करके ट्रेजेडी किंग बुलाया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्यों उनको ट्रेजिक रोल्स में इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: ट्रेजेडी यानी अलमिया किस्म की कहानी का असर ज्यादा होता है, जैसे लैला मजनू की दास्तान या शीरिन फरहाद का वो किस्सा आप समझ लीजिए। ट्रेजिक कहानी होगी उसका असर और गम का, तकलीफ का या रंज का असर जो होता है वो देरपा होता है, खुशी और मसरत जो है वो जल्दी गुजर जाती है। मेरे ख्याल से जहाँ तक कि ये अलमिया अदाकारी का जो इम्प्रेशन ज़्यादा देर तक कायम रहा है वो इसीलिए है कि अलमिया कहानी जो है वो बजाते खुद देर पर असर रखती है।
0: चलिए इसी बात पे इनका एक सैड ट्रेजिक लेकिन आइकॉनिक गाना सुनेंगे जिसके पता नहीं कितने रीमेक्स बन चुके हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है.
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: AG the Gangster. Sham Shandar, let's do not
1: donkey, have a funky time. दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शाम दा लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीच में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
1: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोने थे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
1: बताइए,
2: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो।
2: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes

यार जब जब श्रेया घोषाल और सोनू निगम साथ आया है ना, तब तब धमाका ही हुआ है म्यूजिक में। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कितने गाने हैं जो श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने साथ में गाए हैं, फिर चाहे वो यार एक दूसरे के गानों में एकदम छोटा सा पार्ट ही गाना ही क्यों ना हो, बट एवरी सॉन्ग हैज़ बिन मैजिकल। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ अमेजिंग गानों के बारे में जो इन दोनों ने गाए हैं। एंड द फर्स्ट वन इन माई लिस्ट इज यार दिल डूबा, जो कि एक मतलब आई वोंट से इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इट्स दैट वन अमेजिंग सॉन्ग जिसके मतलब बस मन करता है कि गाने को सुनते ही जाओ। एंड यू कैन नॉट स्टॉप ग्रूविंग ऑन दिस सॉन्ग, स्पेशली अक्षय कुमार का जो हुक स्टेप है दिल डूबा गाने का। तो चलिए आज यही गाना प्ले करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट श्रेया एंड सोनू सॉन्ग। बट आप ही मुझे बता सकते हो कि आपका इस डुएट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तब तक के लिए सुनते हैं दिल डूबा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तू चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: टाइम।
1: श्रेया घोषाल और सोनू निगम जैसी सुरीली आवाज जब साथ में आती है तो म्यूजिक रोमांटिक मास्टरपीस तो बनेगा ही। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बातें हो रही है कि यार श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने जब भी साथ में गाना गाया है तो खूबसूरती वाले गाने, मतलब ऐसे गाने बजे हैं, ऐसे गाने हमको सुनने मिले हैं जो यार मतलब उनको कैटेगराइज ही मास्टरपीस में कर देना चाहिए। तो एक जो रोमांटिक मेलोडी है जो इन दोनों ने साथ में गाई है, दैट इज फ्रॉम द मूवी कुर्बान। अगेन शुक्र अल्लाह इज द सॉन्ग। यार इतना ब्यूटीफुल गाना, इतना ब्यूटीफुल गाना है। एंड यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन एनी अदर सिंगर सिंगिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, स्पेशली दोनों की जो जुगलबंदी इस गाने में, दैट इज एब्सोल्युटली मार्वेलस। तो चलिए सुनते हैं इन दोनों का शुक्र अल्लाह ये गाना फ्रॉम द मूवी कुर्बान। एंड आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स which is sung by Shreya Ghoshal and Sonu Nigam. Tell me on RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI on Instagram. Adab tak ke liye, shukr Allah, right here on Mirchi. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
4: Ab mirchi kha.
6: Radio Mirchi, it's hot.

की टाइम। एक दूसरे के गाने में एक छोटा सा कैमियो भी ना मैजिकल बन जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है श्रेया घोषाल और सोनू निगम के बारे में। वैसे तो यार ये जो गाना है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूं, दैट सॉन्ग इज एंटायरली संग बाय सोनू निगम, बट एक छोटा सा पार्ट इसमें श्रेया घोषाल का है। एंड वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स सिंगिंग दैट वन स्मॉल पार्ट, क्योंकि यार इन दोनों का जो आवाज़ है वो, मतलब जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस इसको मिल जाता है, इट क्रिएट्स अ रोमांटिक मेलोडी। मतलब और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। येस, दैट सॉन्ग इज़ फ्रॉम ओम शांति ओ मैं अगर कहूँ। तो चलिए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में मैं अगर कहूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी इन दोनों का कोई गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तब तक के लिए ओम शांति ओम का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री की धमाकेदार जोड़ी की। जी हां, श्रेया घोषाल और सोनू निगम इज वन दैट फेवरेट जोड़ी ऑफ आर्स, कि जिनके गाने ना, जो डुएट सॉन्ग्स है स्पेशली, बस सुनने का ही मन करता रहता है। एंड वन रिक्वेस्ट जो आप ही से आई है, इट्स फ्रॉम प्रनीता, और प्रनीता रहती है एडिसन में, एंड शी हैज रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग पीयू बोले फ्रॉम द मूवी परिणीता, जो 2005 में रिलीज हुई थी। और प्रणीता को ये मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि परिणीता साउंड्स वेरी वेरी क्लोज टू प्रणीता, और उसको लगता था कि ये परिणीता है ही नहीं, ये प्रणीता नाम की ये मूवी है, इसलिए ये जो गाना है पीयू बोले इस मूवी का, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे एक खास बात इस गाने की ये है कि ये गाना जब शूट किया गया था तो एक सिंगल शॉट में पूरा गाना शूट किया गया था। जी हाँ, कोलकाता स्टाइल हवेली सेट थी जिसमें विद्या बालन थी, और उनका जो लुक था मीना कुमारी से इंस्पायर्ड था। सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय शंतनु मोइत्रा एंड संग बाय नन अदर देन श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। तो चलिए सुनते हैं पीयू बोले फ्रॉम परिणीता। और दोस्तों, अगर आपके भी कोई फेवरेट सॉन्ग्स है फ्रॉम दिस धमाकेदार जोड़ी श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए परिणीता का पीयू बोली, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो।
2: हाँ बोलो, कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल, कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल, कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
2: पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर। ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ होने का। एक काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: जरा। सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या?

0: आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
4: Gulabi saadi ani lali lal la.
0: T-Series present Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीश से। ओवर टू यू बीश।
1: Today is my Guruji's birthday. Jai Guruji Mirchi listeners, your friend Bish from Lion Mortgage. Hope you all had a good day at work. Rain is gone and the US market sink. Mortgage rates on the rise. Well, friends, I would recommend some basic steps home buyers go through when getting a mortgage loan. Number one, the home buyer borrower completes a loan application. Number two, the home buyer gets pre-qualified. Number three, the buyer locates a property and makes an offer to buy. Number four, the mortgage company orders an appraisal. Number five, a title search is performed. Number six, the loan file moves into the underwriting state for a thorough review. Number seven, loan approval. Eight, the loan is funded. So friends, buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. That is lionmtg.com. Remember, listeners, Lion Mortgage offers conventional loans, FHA loans. We offer great rates on jumbo loans. Also, you can now buy investment properties under LLC. We do not require your income documentations. And if you buy investment property under your own name, and if you qualify, you get a better rate. Also, we are offering loans on condo, which are non-Fannie Mae, Freddie Mac approved, or if they are under litigation. So buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तू चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, the jano.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी कुछ गाने ना उसके म्यूजिक की वजह से पॉपुलर हो जाते हैं, कभी कभी कुछ गाने उसके सिंगर्स की वजह से, और कभी कभी कुछ उसके पिक्चराइजेशन की वजह से। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और आज बातें हो रही है बॉलीवुड के म्यूजिक डुओ, वन ऑफ द मोस्ट हिट म्यूजिक डुओ श्रेया घोषाल और सोनू निगम के गानों के बारे में। और एक बहुत ही खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट आई है। अमित जी जो कि रहते हैं एडिसन में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी वजीर तेरे बिन। जी हाँ, ये गाना फिर एक बार शंतनु मोइत्रा ने कंपोज किया है, जिन्होंने परिणीता वाला गाना भी कंपोज किया था पीयू बोले। और यार ये जो गाना है इसमें मतलब म्यूजिक तो अमेजिंग है ही, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज भी अमेजिंग है, लेकिन यार जिस तरह से ये गाना फरमाया गया है ना, मतलब हर एक जो इस गाने का फ्रेम है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सॉफ्ट टोन्ड, वार्म और एक पोएटिक फील देता है। जैसे कि मान लो किसी मेमोरी में से निकाला गया हो ये पूरा गाना, और हर एक फ्रेम इसका एक पेंटिंग जैसा दिखता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है इस गाने का। तेरे बिन सुनते हैं अमित जी की रिक्वेस्ट पर फ्रॉम द मूवी वजीर, यार ऑफ कोर्स सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, आपका भी कोई फेवरेट गाना है सोनू निगम और श्रेया घोषाल का तो मुझे जल्दी से बताइए। टेल मी ऑन RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI जो है मेरा इंस्टाग्राम ID। और फिलहाल सुनते हैं वजीर का ये खूबसूरत गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods खाओ तो जानो। Brought to you by Deep Foods. Deep Foods खाओ तो जानो।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफर की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कंफर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go on donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका वंस अगेन मंडे की इस खूबसूरत शाम में, जहां यार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं सोनू और श्रेया के धमाकेदार गानों की। लेकिन यार एक जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, दैट इज नॉट जस्ट सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, जस्ट देयर डू इट, बट यार इसमें ऑलमोस्ट 6 सिंगर्स हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स, क्योंकि ये गाना पहले तो यार इश्क पे बनाया गया है। 6 सिंगर्स इस गाने में हैं और ये जो गाना है बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है। मतलब ना सिर्फ ये ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन को एक कवाली स्टाइल में गाया गया है बट एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया गया। मतलब सोचिए अगर 6 फ्लेवर्स एक ही बिरयानी में आ जाए तो हो क्या मजा आ जाए। तो वैसा ही एक ही गाने में 6 सिंगर, जैसे कि सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, शान, साधना सरगम, सुचेता भट्टाचार्य, इतने सारे सिंगर्स एक साथ थे, प्लस एडिशन शंकर महादेवन भी थे एज पार्ट ऑफ कोरस जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। जी हाँ, बात हो रही है सलामे इश्क गाने की, उसका टाइटल ट्रैक की बात हो रही है जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि ये गाना रिक्वेस्ट किया है कृति ने, हु इज फ्रॉम जर्सी सिटी। तो चलिए कृति के लिए प्ले करते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल का और भी बहुत सारे सिंगर्स का ये जो ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग है सलामे इश्क, टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सोनू एंड श्रेया सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजी मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए सलामे इश्क का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल भी आंखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी?
3: बेटा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को। बेटे
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణ జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
9: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణ జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
10: Inefficient,
11: very complex,
12: clumsy or
13: confusion ही confusion.
9: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one

दोस्तों बॉलीवुड में कमबैक का चार्म अलग ही होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जब भी कोई एक्टर ब्रेक के बाद वापस आता है ना, तो ऑडियंस का रिएक्शन इमोशनल भी होता है और क्यूरियस भी, क्योंकि उस एक्टर के साथ मेमोरीज जुड़ी होती है। और जब वो वापस स्ट्रांग रोल में आता है ना, तो यार वो सिर्फ एक कमबैक ही नहीं, एक मोमेंट बन जाता है। और ऐसे फेवरेट एक्टर को या एक्ट्रेस को इतने सालों बाद फिर एक बार बड़े पर्दे पे देखने का चार्म ही अलग होता है। वैसे आजकल ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो ओटीटी पे आए। तो यार बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे उनका ट्रांजिशन देखना, और बहुत सालों पहले जो उन्होंने हीरो के रोल किए थे वो चेंज होकर अब वो एक एक्टर या कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, ये देख

0: ना भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप भी मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कमबैक है एक बड़े एक्टर का जो आपको बहुत पसंद आया। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, d

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: Tera kya hoga, Kalya?
16: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था, और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मजे की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
0: There's nothing like the magic of live theater.
5: Celebrate Prayog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
6: Join us on Friday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheatre.com.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मजे की बात तो ये है कि इम्तियाज अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो खत्म होके भी मूवी में खत्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टेड आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's go on donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था। कंपोज्ड बाय प्रीतम, 2009 का लव आजकल का एल्बम। और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है। फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं, क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था और ना सिर्फ उस वक्त, अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana.
2: Rambana.
1: Burga, Burga. La Virpa, la Burga.
2: Mirchi, Burga.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है? मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ? आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
4: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप?
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
3: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीक में रख लो हमें ज्यादा।
4: अरे यार
3: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है? हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
3: बताइए,
4: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
3: बोलो बोलो
5: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।

0: हॉस्पिस कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Listener mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाय प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस

दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था। लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना, अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मजे की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियां फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियां फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुमसे ही बच जाए या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Gulabi saadi ani lali lal la. Disate me bhari raja photo mazaka.
7: T-Series present Dhamaal 4.
8: Gulabi bina chatni kaise bani.
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

एनीटाइम। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मजा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊंगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।